पस्तानी चाह बुरा कर दे हाल, पलक फड़के हाय कि दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

कभी कभार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में हम ऐसी कुछ चीजें, हमें भी नहीं पता होता है कि हमें सुनना है या वी नीड दैट थिंग राइट नाउ, और वो आपके सामने आ जाती है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सिंपली आफ्टरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और मैंने ये कहीं पर पढ़ा था एंड आई होप इट हेल्प समवन, क्योंकि ये उम्मीद देता है कि कुछ तो बेहतर लिखा है, तभी तो हर बार दिल सब्र करने पर राजी हो जाता है। ऐसा होता है ना यार, कुछ तो एक फेज आते हैं, इट्स अ रोलर कोस्टर, लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, तो बस कभी डाउन फेज में ना सबर अपने आप आपके पास आ जाता है। वो इंसान जो जनरली बहुत इंपेशेंट होता है, और आप भी सोचते हो कि भाई ऐसे कैसे इतना ऊपर वाले ने हमें ये सबर दे दिया है, बस कुछ तो बेहतर जरूर लिखा होगा ना, क्योंकि आप सबर कर रहे हो एंड यू डिजर्व इट एंड माइट बी यू वांट टू लिसन दिस फ्रॉम समवेयर। तो बस हमने सुना दिया है, और बस यही उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत ही खूबसूरत जाए। तो बस शो की शुरुआत करते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La
1: virtua la burka. Mirci, burka. हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं
1: बोल, कौन रहा है?
2: नहीं मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में, कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ कटी, कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स, मेरी मेहनत की तूने ऐसी,
1: तूने जेब काटी,
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ तो मैं क्या करूँ उसका,
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मेहनत का क्या होगा, मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17.5 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने। एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ो कु।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
3: हिट गाने कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
7: Udaade pe jo haath phere, saari duniya hille।

0: जो पाँव के ऊपर पाँव को रखे और भेजे,
1: वो चट्टान जिस पे वो बैठे।

0: किस झुके का नहीं साला।
1: 89.6, 89.6.
2: It's hot.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान,
0: खान। मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, आयुष्मान खुराना की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स दैट इज विकी डोनर का ये गाना राइटर ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ. एंड इस तरह से फील गुड वाले गाने सुनकर ना कहीं ऐसे अपने आप मॉर्निंग में ना रिलैक्स हो जाते हो. और बस ऐसे ही गानों का साथ बना रहेगा यहाँ पर राइट हियर ऑन मिर्ची. लेकिन उससे पहले जरा वेदर पर नजर डाल दें. यहाँ पर आज वेदर क्या कह रहा है.
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
0: Weather update.
1: Well, my friends, it is 45 degrees Celsius maximum और 33 degrees Celsius minimum. हालांकि अभी actual जो आप महसूस कर रहे हो वो 37 degrees Celsius पर है. Humidity आज कम लग रही है, 30% पर लग रही है. और दिन में देखते हैं हवाएं जो है वो 21 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मतलब बहुत ही तेजी से हवाएं चल रही है. ह्यूमिडिटी कम का मतलब ये है कि ड्राइनेस होने वाली है हवा में, हवाएं चलने वाली है. तो भाई जो लोग एलर्जीज, डस्ट, पोलन्स, ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा अफेक्ट हो जाता है, जल्दी होता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान रखना है अपना. तब तक के लिए मैं तो हूँ ही यहाँ पर एंटरटेन करने के लिए फिलहाल अदनान सामी की आवाज़ में, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम द मूवी साथिया. माइक से देव तक आप फ्रीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
1: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
2: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
1: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
3: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
4: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
5: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070 7687।

विशाल ददलानी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, गिविंग अ ब्यूटीफुल मैसेज आउट देयर कि बस अभी है, वक्त है, जी ले जरा.

वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए भाई, घर से निकल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो बस जो लोग ड्राइव करते करते हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये अपडेट शायद इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अनाउंस किया है एक टेम्प्रेरी क्लोजर ऑफ अ सेक्शन ऑफ अल मरखिया स्ट्रीट. और ये जो है ये अंटिल सैटरडे 18th of July तक चलने वाला है. लेकिन समझ लीजिए, मतलब अब से अगले 18 दिन कुछ. हाँ अरे भाई, ऑन दैट नोट ये रियलाइज हुआ मुझे कि आज तो 30 जून है, और 30 जून यानी महीने का ये आखिरी दिन. हम हाफ ये साल गुजार चुके थे, ये हम दूसरे हाफ में अब एंटर ही कर चुके थे. मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी अभी एंटर किए हैं, लेकिन इट्स ऑलरेडी 1 month डाउन, 5 months टू गो फॉर दिस न्यू ईयर, और कहते ही कहते ये साल भी खत्म हो जाएगा. लेकिन यस, फिलहाल तो शो चल रहा है और शो पर बहुत जबरदस्त गाने भी चल रहे हैं, जैसे ए आर रहमान की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी हाईवे. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार. अच्छा, मुझे कसूरदार बिल्कुल नहीं ठहराना अगर आप ऑफिस के लिए लेट हो गए और ये गाना एंजॉय इतना करने में गुम हो गए. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा. इट्स हॉट.

0: Digi Helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख, रख.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

0: देखो बहुत टाइम के बाद कोई गाना सुनो ऐसा जो बहुत पहले पसंद आया करता था, उसके बाद में फिर पसंद नहीं आता था, तो अच्छा लगने लगता है अभी, है ना। काफी अरसे बाद स्त्री टू का ये गाना आज की रात मधुबन तिवाकची दिव्य कुमार की आवाज में, राइटर और मिर्ची, और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 7:04 पर।
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: और प्लेइंग नेक्स्ट ट्रैक विच इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स। जब आफरीन अपने फेवरेट ट्रैक की बात करती है ना, तो समझ जाइए कि ये कोई ना कोई 90s इंडी पॉप का गाना लेकर आई है, और बस सोनू निगम की आवाज से बेहतर और कौन सा 90s इंडी पॉप गाना हो सकता है। तो रेडियो सच के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये मजे से गाने सुनो। सून आफ्टर दैट फुटबॉल का स्कोर देखेंगे ना यहाँ पर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

What a crazy match. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और मैं ना फुटबॉल की वैसे इतनी वाली बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे जब मैं बैठ गई देखने को मुझे देखना बड़ा मजा आता है. वेल टॉकिंग अबाउट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो चल रहा है, नॉकआउट स्टेज ने पहले ही दिन बताया कि भाई यहाँ रेप्यूटेशन से ज्यादा टेम्परमेंट काम आता है. कल के राउंड ऑफ 32 में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी एंट्री मार ली है. लेकिन व्हाट अ मैच आई वुड से. जापान ने एंड तक ना जबरदस्त फाइट दिखाई है. इनफैक्ट ब्राजील का जो सेकंड गोल था वो बिल्कुल आखिरी मिनट पर हुआ है. एंड आई वाज रियली वेटिंग कि भाई ये मैच किसी ना किसी तरीके से पेनल्टी शूटआउट पे चली जाए. एंड आई वाज स्ट्रांगली रूटिंग फॉर जापान. वेल बात करते हैं एक और बड़े अपसेट के बारे में, जहां पैराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया. दैट इज एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग. मतलब टूर्नामेंट के स्ट्रांगेस्ट कंटेंडर्स में से एक जर्मनी का सफर यहां खत्म हो जाता है. वेल कनाडा तो पहले ही अपनी जगह राउंड ऑफ 16 में बना चुकी है. वेल आज की अगर बात करें तो नॉकआउट एक्शन और भी एक्साइटिंग होने वाला है. एंड आई एम सुपर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस मैच विच इज नेदरलैंड्स का मुकाबला मोरक्को से. यस, जहां पेस और पोजीशन की टक्कर देखने को मिलने वाली है आज. एंड आई एम श्योर दिस इज गोना बी वन ऑफ अ मैच. उसके बाद आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे है और दिन का ब्लॉकबस्टर होने वाला है फ्रांस वर्सेस स्वीडन. यानी एम्बापे की फ्रांस को स्वीडन की डिसिप्लिन फुटबॉल से बड़ी चैलेंज मिलने वाली है. ये बात मैं जरूर बता दूं आपको दोस्तों, दैट वर्ल्ड कप का गोल्डन रूल याद रखिएगा, नॉकआउट में सिर्फ एक बैड डे और पूरे 4 साल का इंतजार बन सकता है. सो वेल ये आज की मैच में आप किसके लिए रूट कर रहे हैं? आई थिंक सो फॉर मी मोरक्को एंड फ्रांस, ये दो टीम्स हैं जो मैं आज के दिन सपोर्ट करूंगी. 5000 1896 व्हाट्सएप नंबर है. लेट्स सी कौन जीतता है आज. आप भी अपने गैसेस लगाइए, मजा आएगा. फिर कल इसके बारे में और डिस्कस करेंगे राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग्स. माइक से दिल तक आफरीन के साथ. इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na
1: pierdva la burga. Milci, burga. हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगा मा पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारेगा मा पा। हमारे ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती हूं।
2: ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारेगा मा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सा, स्टार्ट।
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: माय गॉड, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: it's hot.
5: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
6: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर्स मोर. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
8: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
10: कम है के?
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची 1.

अच्छा मुझे बताइए कि आप भी मेरी कैटेगरी में आते हैं कि आपने जो मैंगो फेस्टिवल है वो मिस कर दिया हो? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को. और बहुत मन था इस बार मेरा मैंगो फेस्टिवल में जाने का. इनफैक्ट मैं हर साल ना दो बार जाती हूँ, लेकिन इस बार तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं जा पाई और अफसोस में थी. लेकिन नो मोर अफसोस, क्योंकि जैसे ही हमारा इंडियन मैंगो फेस्टिवल यहाँ पर वाइंड अप हो गया, रैप अप हो गया, अब तैयारी हो रही है पाकिस्तान के मैंगो फेस्टिवल की. तो यार, अगर मैंगो का आपको बहुत ही शौक है, भले वो इंडियन हो पाकिस्तानी हो, फ्रूट तो फ्रूट होता है. इनफैक्ट फ्रूट हर जगह का अपना अलग ही मजा लेकर आता है. सो आई थिंक सो दिस वन इज फॉर यू. ये पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल जो शुरू होने वाला है 9th ऑफ जुलाई से लेकर ये चलने वाला है 18th ऑफ जुलाई तक. तो देखिए, इस बार बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि फिर ये अब मिस हो गया ना तो फिर आपको चांस बिल्कुल नेक्स्ट ईयर आएगा. और वैसे ये हो तो वही रहा है जहां पर मैंगो फेस्टिवल इंडिया का हुआ था, दैट इज ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सूक वाकिफ. सो यू गेट रेडी. अभी तक आई एम श्योर आपने जो इंडिया खरीदे होंगे वो स्टॉक तो आपके पास होगा ही, और 9 जुलाई तक चल भी जाएगा शायद. अगर नहीं भी चला तो 9th को आप फिर से रीस्टॉक कर सकते हो दूसरे मैंगोस के साथ में. मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, राइट ऑन मिल्क शेक इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी। विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
7: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
6: Catch Officer Brown, tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown, streaming on Hindi Z5 from 12th June.
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn? अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. तो फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइन्स विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर्स मोर. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट.
10: वेल दोस्तों, अगला गाना जो मैं लेकर आ रही हूँ यहाँ पर, इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स. बहुत ही अंडररेटेड गाना, एक अंडररेटेड सिंगर की आवाज़, परेश पहुजा की आवाज़, दूरों दूरों अनप्लग्ड वर्जन लेकर आ रही हूँ. लेकिन यार, ये गाना आप पूरा सुनिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें जो एक शायरी आती है ना, दैट इज सो हार्ट टचिंग. मतलब मी बीइंग मी, आफरीन को शेर व शायरी से कितनी ज्यादा मोहब्बत है आप तो जानते ही हो. एंड ये शायरी मैं जरूर आप तक लेकर आना चाहती हूँ इन द सॉन्ग दूरों दूरों. राइटर ऑन मिर्ची, माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, कहा था ना आपको ये गाना आपको जरूर पसंद आएगा परेश पहुजा की आवाज में। एंड ऑन दिस नोट, चलिए मैं वो आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका आपको इंतजार है, यानी यार गेम की बात कर रही हूँ। यस, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट है जहाँ सीन सुनाने वाली हूँ। बस कितने सालों से ही हम ये गेम खेल रहे हैं लेकिन इट नेवर फेल्स टू अम्यूज अस, है ना?
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: कह रही तू नाक में दम कर रखा तूने, हाँ विक्रम बेताल का खेल खेल रहा मैं तेरे साथ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरी गर्दन पे आके बैठ जाता, शर्म नहीं आती तुझे? चल बाहर निकल, बाहर निकल सलाम को।
3: क्या है,
2: कहाँ पढ़ते हो?
3: इकोनॉमिक्स।
2: कहाँ पढ़ते हो?
3: गुवाहाटी।
1: ऑलराइट, बताइए कौन सी मूवी है ये? व्हाट अ कल्ट क्लासिक मूवी दिस वाज। 5001896 जहां हुज़ैब का मैसेज ऑलरेडी आ गया है सुपर फास्ट और बिल्कुल सही भी आया है, और अब्दुल रज़ाक का भी मैसेज आया है सेइंग द राइट आंसर दैट आवाज तो आपने एक्टर की पहचान ही ली होगी, और ऐसे डायलॉग्स और ऐसी मूवीज इनकी बहुत सारी आई है लेकिन ये जो आई है ना ये बहुत ही कमाल की मूवी थी। मतलब आपको डरा भी रही थी, हंसा भी रही थी और बड़ा कंफ्यूज भी करा रही थी। बहुत बड़ा हिंट दे दिया, बस हो गया। चलिए मैं तरुण और स्वर वर्मा की आवाज में वन ऑफ माय फेवरेट गाना माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर सैयारा का ये गाना, एंड आई जस्ट लव ऑल द ट्रैक्स ऑफ दिस मूवी सैयारा यार। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और बस सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर चल रहा था आपके साथ। मैं लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेल रही थी और आज शायद इतनी ज्यादा कॉमन आवाज सुना दी कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि भाई इनकी तो इतनी सारी मूवीज आती रहती है, भला ये कौन सी मूवी से है। चलिए फिर से डायलॉग सुन लीजिए और गेस करने की कोशिश कीजिए।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट।
2: नाक में दम कर रखा तूने, विक्रम बेताल का खेल खेल रहा हूं मैं तेरे साथ। मैं जहां जाता हूं मेरी गर्दन पे आके बैठ जाता, शर्म नहीं आती तुझे? चल बाहर निकल, सलाम करो।
3: क्या है,
2: कहां पढ़ते?
3: इकोनॉमिक्स।
2: कहां पढ़ते हो?
1: ऑल राइट, कौन सी मूवी है ये? यहाँ पर त्रिशा का मैसेज आया है, देन आई हैव शाहजी अब्दुल करीम, इनका भी यहाँ पर मैसेज आया है, देन आई हैव अब्दुल रज़ाक एंड हुसैब, और किसी ने मैसेज हमें यहाँ पे किया भी है, आई मीन वॉइस मैसेज किया है। चलिए सुनते हैं आंसर उनका। All right.
4: Directed by Priya Darshan and by Pritam, and the protagonist was Aishwarya Rai, Shine Captain, Deepika Balan.
1: चलिए अमीषा पटेल, अक्षय कुमार, शाइनी आहूजा, विद्या बालन की ये मूवी, भूल भुलैया का ये डायलॉग था, व्हाट अ हिलेरियस मूवी यार। उसके बाद में बहुत सारे भूल भुलैया बनी, वही 2-3 तक भी पहुंचे, लेकिन नहीं वो मजा नहीं आया जो फर्स्ट में आया था, जो ओरिजिनल मौंजलिका में जो था वो आगे नहीं आया है ना। वेल यहाँ पर चार्ली का भी मैसेज फिलहाल आया है। वेल भूल भुलैया की एक मजे की बात बताऊं कि ऑफकोर्स वी नो दैट अक्षय कुमार वॉज द लीड, लेकिन मूवी शुरू होने के 1 घंटे तक भी अक्षय कुमार की एंट्री हुई नहीं थी बाय द वे मूवी में, बहुत टाइम लगा उनको, बट स्टिल जैसे ही केम इनटू द सीन, आई थिंक सो ही जस्ट टुक अवे ऑल द अटेंशन। यार एक टाइम था यार प्रियदर्शन जब काम करते थे अक्षय के साथ में या किसी के साथ में भी, कितनी कल्ट क्लासिक मूवीज बनाते थे, एंड दैट मैजिक आई डोंट थिंक सो इज लेफ्ट एनी मोर विद दिस। चलिए इंतजार रहेगा कि वो मैजिक फिर से लौट आए, लेकिन फिलहाल ये जो गाना आपको मैं सुनाने वाली हूँ, I am sure बहुत अरसों बाद ये गाना आप सुन रहे होंगे, and you're gonna love it। केके की आवाज में भुलभुलैया का ये गाना on Mirchi Mornings with माइक से दिल तक आफरीन के साथ। It's hot।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे क्या

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया,

ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: वेल कॉकटेल टू का ये गाना नीरज श्रीधर की आवाज, ग्लैड दैट भाई नीरज श्रीधर की ओरिजिनल आवाज रखी गई है। गाना तो भाई हमारा पुराना वाला ही है, कविता सेठ और नीरज श्रीधर की आवाज में, लेकिन फिर से बंधु टू करके डाल दिया है कॉकटेल टू मूवी में। वेल ये तो हो गई गाने की बात, लेकिन जरा मिर्ची घड़ी का इशारा किस तरफ कर रहा है देखते हैं। ये है सुबह के 8:03 की तरफ।
1: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: अच्छा दोस्तों मुझे सच सच बताइए, जब सुबह आंखें खुलती है ना तो पहले किसी इंसान का चेहरा

देखते या फिर फोन की स्क्रीन. Caught you. और मुझे यकीनन पता है कि ज्यादातर लोगों का यहाँ पर जवाब था, हाँ यार आफरीन फोन की स्क्रीन ही देख लेते हैं, गिल्टी फॉर दैट. लेकिन देखिए भाई, आज है 30th of June और बात करते हैं फोन के बारे में, और फोन में एक ऐसी दुनिया के बारे में जो हमें कितना ज्यादा कनेक्टेड रखती है. वेल, इट इज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, एक ऐसा दिन जो सिर्फ रील्स, मीम्स और सेल्फी सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि भाई सोशल मीडिया ने हमारी दुनिया कितनी बदल दी है. देखिए, इस दिन की अगर शुरुआत करें तो 2010 में हुई थी जब मैशेबल ने इसे लॉन्च किया था, जो ये इसलिए था कि वो रिकग्नाइज कर रहा था द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द वे वी कनेक्ट एंड कम्युनिकेट. देखिए, सोशल मीडिया हमें कनेक्टेड जरूर रखता है, लेकिन कनेक्शन और अटेंशन में बहुत ही एक फाइन लाइन होती है. एक तरफ इसकी वजह से हम फैमिली से जुड़े रहते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं, टैलेंट शोकेस करते हैं, और दुनिया भर की न्यूज ना हमें ऐसे चुटकियों में सेकेंड्स में मिल जाती है, और दूसरी ही तरफ हम डूम स्क्रोलिंग में भी घुस जाते हैं, कंपेरिजन करने लगते हैं दूसरों के साथ, एक लाइफस्टाइल और डिजिटल फटीग भी इसी पैकेज का हिस्सा है. तो बस इतना ही कहना चाहूंगी आज ऑन वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, दैट पोस्ट कम पॉज ज्यादा, स्क्रोल कम सोल ज्यादा. अगर कोई पोस्ट आपको होता है ना कई बार कि कोई पोस्ट आपको इंस्पायर करे, तो उसे सेव कर लीजिए. अगर आप कोई स्क्रोल करते करते आपको कोई कॉलेज का दोस्त, स्कूल का दोस्त का पोस्ट नजर आ जाए, उसके लाइक माइलस्टोन मोमेंट्स जैसे शादी, बच्चे, तो भाई उससे लाइक मत कीजिए, एक कॉल भी कर लीजिए ना, क्योंकि एल्गोरिथम्स जो है वो एंगेजमेंट जरूर बढ़ा सकता है, लेकिन रिलेशनशिप सिर्फ कॉन्वर्सेशन से बनते हैं. क्या कहना है आपका? हैप्पी वर्ल्ड सोशल मीडिया डे, और आज सोशल मीडिया को यूज करिए, लेकिन उसका यूजर बनिए, उसका प्रिजनर नहीं. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ अनवर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया था?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लग
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है
2: मैडम? आई लव यू। हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's hot। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्डन डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

वेल विशाल मिश्रा की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और आ गया है वो दिन जो शायद आप पूरे महीने में आपके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान दे जाता है। वेल इट इज द मंथ एंड 30th of June है और सैलरीज आपकी जो अकाउंट में वो एक अच्छी खूबसूरत सी खनक लेकर आने वाली है। एंड बस सैलरी जब आई गई है तो भाई एक्सचेंज रेट पर भी जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब एक्सचेंज रेट बहुत काम में आएगी अगर आप वेकेशंस पर जा रहे हैं, क्योंकि यही सैलरी को आप अच्छे रेट पर एक्सचेंज करवाओगे और फिर वेकेशन पर जाकर उसका इस्तेमाल करोगे शॉपिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, क्या कहते हो? वेल देखिए एक्सचेंज रेट आज का आईपे का ये कह रहा है दैट 1 Qatari riyal के बदले आपको इंडियन रुपीस मिल रहे हैं 25.91, वहीं जवना पाकिस्तानी रुपीस 76.85 कह रहे हैं और बांग्लादेशी टाका 33.90 पर है। श्रीलंकन रुपीस की बात करें तो 92.44 एंड नेपाली रुपीस इज एट 41.43। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां लेकर जाइए अब तो यहां से, है ना। मैं हूं आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक राइटर ऑन मिर्ची। What?

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: IBE payments ka wah tarika. With IBE, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IBE app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IBE, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: केके और सुनिधि की आवाज में टैक्सी नंबर 9211 का ये गाना, आई जस्ट लव दिस ट्रैक ना, कितना प्यारा गाना है, इतनी खूबसूरत सी फील गुड वाली एक फीलिंग देता है, एंड आई होप आपको भी ऐसे ही लगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरनून को सुन रहे हो आप ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और भाई साहब, मैं लेकर आई हूँ एक गेम, और पहले तो मैं ऐसे गेम खेलती थी जहाँ पर मैं मूवी की कहानियाँ सुनाती थी, फिर मैं अब ऐसा गेम खेलने लगी हूँ जहाँ पर मैं लोगों की आवाज़ें सुनाती हूँ, और आपने गेस करना है कि यार आफ्टरनून आज किसकी आवाज़ सुना रही है हमें। सो रेडियो सेट्स की वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से ये आवाज़ सुनो।
2: Always follow your dreams. अगर आप पैसे के चक्कर में फंस गए, और वही जब मेरी माँ कहती है तुमने एक सीट बर्बाद कर दी, तो मैं कहा अब मैं से कॉम्पोजिशन क्या दूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टरी कभी छोड़ोगे नहीं। आई सेड ओके फाइन, आई विल नॉट डू इट। मैंने कोविड में इतने लोगों को देखा और ट्रीट किया और क्योर किया कि यू विल नॉट बिलीव इट। मतलब मेरे क्लिनिक, मेरे घर के नीचे ही मेरा क्लिनिक है और स्टूडियो वही है। And the studios also called the clinic. Again, I am going to say this: follow your dreams.
1: Right. मतलब ये डॉक्टर है और ये म्यूजिशियन भी है, कौन है ये? 5000196 is my number. ऐसा तो मेरे ख्याल में बहुत कम ही होता है हमारी इंडस्ट्री में, जो डॉक्टर भी है और जो म्यूजिशियन भी है, और हम सब बराबर से उन्हें जानते हैं। जब आपको पता चलेगा ना ये किसकी बात कर रहे हैं हम, तब आपको लगेगा अरे यार ये इनकी आवाज़ थी। तो चलो, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 5000196। वो कौन से म्यूजिशियन है जो एक डॉक्टर भी है, बताइए मुझे। अमित वेर और शाहिद महलिया की आवाज में ये अगला गाना कमिंग योर वे। अमित त्रिवेदी की म्यूजिक, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम द मूवी मनमर्जिया। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
3: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आमतौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
2: Sleep well? Oh ho ho ho! फिर तो fit होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
5: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार.
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: संजू राठौर की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची आड़ी काय गोड गाना होता है। अब मराठी गाना है तो यार मराठी गाने की तारीफ मराठी में तो ही करूंगी ना मैं। और देखो ये सिर्फ मुझे ही नहीं लगता है, इनफैक्ट यहाँ पर इम्पा का भी मैसेज ये आता है कि वही क्या गाना था, व्हाट अ पावर पैक सॉन्ग, एक नंबर गाना। थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग आफरीन भाई। थैंक यू क्या है, वेलकम भाई। आपका ही स्टूडियो है, आपका ही रेडियो चैनल है, जो मर्जी चाहिए आप बता सकते हो हमें कभी भी यार कि आफरीन जरा ये सुनने का मन कर रहा है, ये बजा दीजिए। तो बस हम तो है ही यहाँ पर हाजिर। वेल ऑन दैट नोट, चलिए यहाँ पर हम गेम खेल रहे थे ना उसकी बातें करते हैं। एक आवाज़ मैंने सुनाई थी आपको, आपको गेस करना था कि आखिर ये आवाज है किसकी। सो चलिए पहले आवाज सुन लीजिए और फिर उनके बारे में बात करेंगे। सो हियर इट गोज।
2: ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम्स। अगर आप पैसे के चक्कर में फंस गए और वही जब मेरी माँ कहती है तुमने एक सीट बर्बाद कर दी, तो मैं कहा अब मैं से कॉम्पनसेशन क्या दूं, तो उन्होंने कहा कि तुम डॉक्टरी कभी छोड़ोगे नहीं। आई सेड ओके फाइन, आई विल नॉट डू इट। मैंने कोविड में इतने लोगों को देखा और ट्रीट किया और क्योर किया। You will not believe it. I mean, मतलब मेरे क्लिनिक मेरे घर के नीचे ही मेरा क्लिनिक है और स्टूडियो वही है। And the studio is also called the clinic. Again, I am going to say this. Follow your
1: dreams. All right, follow your dreams. That's actually true. और वही हम कर रहे हैं यहाँ पर. But किसकी आवाज़ है ये? ऐसा बहुत कम होता है ना हमारे इंडस्ट्री में कि भाई कोई म्यूजिशियन डॉक्टर भी है. Well, to be specific, ये डेंटिस्ट है, ठीक है. और इनका जो नाता है ना हमारे 90s वाले लोगों के साथ बहुत ही गहरा है. अब आपको समझ में आ रहा है किसकी आवाज़ है? चलिए जिसको समझ में आए उनकी तो आवाज़ यहाँ पर सुना दी है.
3: Good morning, Afri.
1: Good morning.
3: Palash Sen is the right answer for the musician.
1: Bilkul sahi.
3: Doctor also.
1: That is actually right, yeah. Palash Sen, वो है जो सिंगर म्यूजिशियन सब कुछ है, जिनका एक बैंड था यूफोरिया नाम का 90s का, और इतने खूबसूरत से गाने थे। वैसे पलाश सेन का ये जो आंसर है ये अमित ने दिया था, और यहाँ पर अब्दुल रजाक का भी मैसेज आया है, दनाइम्पा का मैसेज आया है saying it is the voice of पलाश सेन। और नेकी और पूछ ऐसे ही कहोगे जब इनकी बात छिड़ी गई है तो आई एम श्योर दिस सॉन्ग हैज एब्सोल्युटली नो हेटर्स। यूफोरिया बैंड का ये गाना माई री प्लेइंग राइट हियर फॉर यू। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: वेल बंजारे का ये गाना बैरान एंड आई लाइक इट. इसकी म्यूजिक अच्छी है कि आवाज अच्छी है, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड दैट, बट आई लाइक द फील ऑफ द सॉन्ग. वेल मिर्ची घड़ी का फिलहाल तो इशारा हो रहा है सुबह के 9:03 की तरफ और मेरा टाइम है यहाँ पर आपको स्कोर सुनाने का.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
0: वो कहते हैं ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, दैट इज फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 फॉर यू गाइस. भाई क्या बताऊं, कल तो इतनी सुपर

एक्साइटिंग मैचेस थी। देखिए हम तो आ गए हैं अब राउंड ऑफ 32 में, जहां पर डू और डाई सिचुएशन है, मतलब नो सेकंड चांसेस, जो है यही है। और अब यहां से आगे जाना है ना, तो बस एक टीम को बस हराना है आपने, एक ही मैच है, बस उसी में कमाल दिखाना है। और ऐसे ही कुछ कमाल कल ब्राजील ने दिखाया। लेकिन लेट मी टेल यू, कल ब्राजील वर्सेस जापान की जो मैच थी, यहां पर जापान ने क्या जबरदस्त फाइट दिखाई है। ऑल्सो आई वॉज स्ट्रॉन्गली रूटिंग फॉर जापान इन दिस मैच, क्योंकि मुझे ऐसा था कि भाई एक एशियन टीम जो है वो आगे जाए यार, और बस ऐसा कुछ कमाल हो जाए कि जीत भी जाए, आज नहीं तो कल ऐसा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ब्राजील और जापान की मैच में लास्ट, एकदम लास्ट मिनट पे 2-1 से ब्राजील ने जीत हासिल की। उसके बाद अगर बात करें तो सबसे बड़ी हार में दो और टीम्स आती हैं, जो है पैराग्वे और जर्मनी के बीच की जो मैच थी, पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे जीत गई भाई। यहाँ भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आउटकम था। और ऐसे ही बहुत टक्कर का मुकाबला था जो था नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को का, जहाँ मोरक्को ने भी जीत हासिल कर ली है। यार क्या बात है, और बड़ा मजा आ गया भाई। ये तो बस शुरुआत है, कनाडा ऑलरेडी अपनी जगह राउंड 16 में बना चुकी है। अब बात आती है आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे की, और उसके बाद ब्लॉकबस्टर मैच कह सकते हैं अगले 24 घंटे के बीच, ये है फ्रांस वर्सेस स्वीडन, जहां एम्बापे की फ्रांस को स्वीडन की डिसिप्लिन फुटबॉल से बड़ी चैलेंज मिलने वाली है। और ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का गोल्डन रूल याद रखिएगा, नॉकआउट में सिर्फ एक बैट दे और पूरे 4 साल का ना इंतजार बन सकता है। बोल बताइए अब मुझे, आप जो अगली मैचेस हैं यहाँ पर, उसमें आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फ्रांस वर्सेस स्वीडन में आप किसके साइड हो, और आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे में आप किसके साइड हो? 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर, लेट्स कनेक्ट हियर और गेसिंग गेम खेलते हैं, और फिर कल आकर इस पर फिर से चर्चा करेंगे। राइट, ऑनवर्ड, आप श्री ने आपके साथ माइक से दिल तक, इट्स हॉट।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा अभी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपना नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकड़ू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
6: दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: वेल मुझे सुनने वाले ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, मुझे सच बताइए कि भाई आपके बच्चों को किसी चीज से एलर्जी हुई है या फिर आपने खुद ही ऐसे जजमेंट कर दिया है कि नहीं यार इसको शायद दूध सूट नहीं कर रहा है या अंडे सूट नहीं कर रहे हैं या ये सूट नहीं कर रहा है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि पेरेंटिंग करते वक्त पहली बार रहती है, बहुत सारे अजम्पशंस हम कर लेते हैं और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक नई खबर आई है।
1: क्या खबर कदर?
0: देखिए खबर ऐसी है दैट हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने वर्ल्ड एलर्जी वीक के मौके पर दो नए स्पेशलाइज्ड पीडियाट्रिक एलर्जी सर्विसेज लॉन्च किए हैं। देखिए अब बच्चों के लिए स्किन एलर्जी टेस्ट और फूड एंड ड्रग चैलेंज टेस्ट अवेलेबल होंगे। स्किन टेस्ट डॉक्टर्स को एक्चुअल एलर्जन जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जिससे अर्ली डायग्नोसिस और बेटर एलर्जी मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। और जो फूड एंड ड्रग चैलेंज टेस्ट है ना, उनका काम सिर्फ एलर्जी पकड़ना नहीं होता है बल्कि एलर्जी को रूल आउट करना भी होता है, क्योंकि कई बार ना लोग सालों तक अननेसेसरीली मिल्क, एग्स या कुछ मेडिसिन ना अवॉइड करते हैं जबकि साइंटिफिकली उनकी जरूरत होती नहीं है। मेडिसिन में ना एक कॉन्सेप्ट होता है ओवर डायग्नोसिस बाय अजम्पशन, मतलब टेस्ट के बिना सिर्फ गेस वर्क किया और उस वजह से बस रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि नहीं ये नहीं खाना है, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो नई सर्विसेज है जो हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन लेकर आई है, ये गेस वर्क को रिप्लेस करेंगी एविडेंस बेस्ड डायग्नोसिस से। और इसका रिजल्ट क्या है कि आप अपने बच्चों को ना बेटर न्यूट्रिशन दे सकते हैं, अननेसेसरी जो फूड रिस्ट्रिक्शन लगाए रखे हैं उससे छुटकारा मिल सकता है और एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा जुडिशियसली कर सकते हैं। तो वेल अगर आपके घर में किसी बच्चे को रिपीटेडली एलर्जी सिम्टम्स अगर होते हैं ना, तो सेल्फ डायग्नोस या गूगल या फिर चैट जीपीटी ये सब बिल्कुल नहीं कीजिए, साइंटिफिक कंफर्मेशन कीजिए, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम एलर्जी नहीं सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और जब ये क्लैरिटी मिलती है ना तो पेरेंटिंग भी जो है वो थोड़ी और स्ट्रेस फ्री हो जाती है ना कि नहीं। माइक से दिल तक आप शीन के साथ हैं, आप राइट हियर ऑन वर्चुअल शेयर्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अंकित तिवारी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना। और आज की जो मेरी शेर है, जो शायरी कहिए, शेर कहिए, कविता कहिए, वो खासकर वो लड़कियों के लिए है। एंड आई एम श्योर द गर्ल्स विल रियली रिलेट कि हम अक्सर, हमारे पास टैलेंट होता है, काबिलियत होती है, लेकिन कभी कभार वो चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो बस, टू ऑल द लवली गर्ल्स आउट देयर लिसनिंग टू मी, दिस वन इज़ फॉर यू।
0: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी।
1: मैंने शेर कहा वहां वहां की उम्मीद की, तुमने कहा कि तुम खूबसूरत हो। मैंने कविता सुनाई, तालियों की आवाज सुननी चाहिए, तुमने कहा ये रंग तुम पे बहुत जचता है। कभी आंखों को बंद करके सिर्फ कानों से सुनो, मेरे शब्दों की भी कुछ मायने हैं। मैं कैसी दिखती हूं ये बताने के लिए मेरे घर में बहुत से आईने हैं। बात बहुत गहरी है और आई होप आपको समझ में आई कि यार कभी कभार काबिलियत पर भी ध्यान देना चाहिए। एंड आई फील ऑल द वुमेन आउट देयर आर सो पावरफुल, सो स्ट्रांग एंड हैव सो मच ऑफ टैलेंट इन देम। एंड यस, अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री?
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन होलिस्टिकली फिट। ही कैन सर्वाइव एनीवेयर। अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार विल बी द ओनली गाय हु विल सर्वाइव एंड कम आउट।
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: एकदम सही सुना तुमने, किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
5: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
6: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
7: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
8: Qatar ka number one radio station.
9: 89.6
10: FM Mirchi 1. It's hot.

0: हेल्पलाइन।
1: हाय अंजलि, मैच ये हेल्पलाइन बोल।
0: यू नो आई लव ट्विनिंग, पर मेरा बीएफ मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
1: हाय, तो गलत थोड़ी बोल रहा है, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

well, हमारी एंट्री लेने का टाइम तो नहीं यहाँ पर, लेकिन एग्जिट लेने का टाइम हो गया है और एंट्री किसी और की होने वाली है. हाँ जी, what a song, बप्पी दा यार, आपके म्यूजिक और आपके गानों में ना एक अलग ही एक्स फैक्टर था, आई कुड से. विशाल ददलानी की के नीति मोहन की आवाज़ में ये गाना आपने अभी सुना. और अब मेरा जाने का यहाँ पर से अब समय आ गया है, एंड इट इज़ 30th of June. और जैसे मैंने बताया कि आज है वर्ल्ड सोशल मीडिया डे एज वेल. एंड ऑन दिस नोट कि अगर आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो ना, तो फटाफट से मुझे अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स ना भेज दीजिए कि भाई हम ये ब्लॉगर हैं, हम ये इन्फ्लुएंसर हैं. समवन इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, डू सेंड मी ऑन व्हाट्सएप 5000 1896 पर फटाफट से भेजो, एंड यू माइट गेट एज वेल अ न्यू फॉलोअर, है ना. चलिए फिर लेती हूँ अलविदा और मिलूंगी कल सेम टाइम सेम शो, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक. और अब एंट्री करने का वक्त तो आ गया है अंशु का, जो थोड़ी ही देर में आपको यहाँ पर अपनी मीठी मीठी बातों के साथ में एंटरटेन करेगी. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. टाटा, बाय बाय, सायोनारा. दिस इज माइक से दिल तक आफरीन ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

Well, Mehmood ki power pack awaaz and what a lovely track it is and super trending gana. Matlab kuch gaane aise hote hain jo puri tarah se reels ki bahar lekar aate hain. Matlab kisi aur ki zindagi mein laaye na laaye, lekin haan Instagram ki zindagi mein zarur laate hain. Unme se ek ye gana zarur hai. Mirchi Anshu. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajay Anshu with you. Zindagi mein mithas ne saath hi spice ka tadka lagate hue ek baar phir se aa chuki hu. And sach kahun yaar, is waqt agar waqt ko analyze karne ki main koshish karun to scenario kitna badal chuka hai. Aapko yaad hai, agar aap 90s ke daur ko sochne ki koshish kare, use mehsoos karne ki koshish kare, to us waqt agar koi gana trending hota tha to hamare liye usse aur bhi zyada popular karne ka tarika ek hi hota tha. Are mama ki shaadi mein nacho, chacha ki shaadi mein nacho, school ke annual function mein nacho, agar kuch na mile to ghar pe gana baja ke जोर जोर से नाचो. एंड ये बात डिपेक्ट करती थी कि कोई गाना जो है ये पॉपुलर है, कितना पॉपुलर है. एंड उसके बाद जरा एक दूसरा दौर आया जब लोगों के पास मल्टीमीडिया फोन्स आने लगे. मतलब जो गाना काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, हर किसी की रिंग टोन में वो गाना हुआ करता था. याद है आपको, दौर कॉलर ट्यून या तो फिर रिंग टोन, आपको वो पॉपुलर ट्रैक जरूर सुनाई देगा. वो फेज भी हमने पार किया भाई साहब. एक और दौर आया जब गाड़ी के हॉर्न में ना एक अलग सी धुन बजा के सारे लोग अपने आप को धूम का हीरो समझते थे. वो लड़के जो स्कूल कॉलेज के बाद गलियों के चक्कर लगाते थे. एंड आज के डेट में देखने की कोशिश करें तो अगर कोई गाना पॉपुलर है तो भाई ये बात पॉपुलैरिटी कैसे डिफाइन होगी, आखिरकार इंस्टाग्राम यानी कि सोशल मीडिया में उसकी कितनी रील्स बनी है. तो बस यार, वक्त के साथ ट्रेंड्स चेंज होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस जो हैं उसके पीछे वही रह जाते हैं. चलिए जी, इसी के साथ करते हैं मीठी मिर्ची की शुरुआत. अगर इस वक्त आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो आपका मुझे बताने का वक्त आ चला है. जल्दी से गुड मॉर्निंग मैसेज के जरिए कतर, आई एम वेटिंग फॉर यू. 5000186, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर गुड मॉर्निंग मैसेजेस. मेरे लोग मैसेज भेजो. मीनवाइल कुछ आगरा की आवाज में एक अगला प्यारा सा गाना आप तक पहुंचाते हैं. बाकी बातें होंगी आपसे कुछ देर में. Enjoy. बंदी का नाम अंशु.

0: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची 1 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
3: हेलो, इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगामा पा।
2: क्या नाम बताया आपने?
3: धारेगामा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
2: थोड़ा बहुत गा लेती
3: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर धारेगामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
2: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
3: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
2: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
3: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट।
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए।
1: ओ
0: तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: अरे यार, जिस लड़की का आपको इंतजार है वो बस यही है क्या यार? मतलब मैं आपके पास हूँ, आप सवाल जो है किसी और से पूछ रहे हैं। मिठी घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:21।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: ये वर्ल्ड कप है बॉस, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस वक्त का वर्ल्ड कप कुछ इस तरह का फीवर हमें दे रहा है कि इसके आगे वायरल जो है ना वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। वेल, अब तक अगर आपको लगता था कि वर्ल्ड कप जो है ये फेवरेट्स का टूर्नामेंट है, तो इस बार के वर्ल्ड कप ने सबको पूरी तरह से गलत प्रूफ कर ही दिया है। देखिए यार, बात इतनी है कि नाम जो है वो बड़े हो सकते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में नर्वस सिस्टम एंड मेंटालिटी और भी बड़ी चीज है, जो ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बताते आए हैं। ये बात 101% प्रूफ हो चुकी है। अगर कल रात के मैचेस को देखने की कोशिश करें तो भाई, 4-time वर्ल्ड चैंपियंस यानी कि जर्मनी, किसने सोचा था कि वो राउंड ऑफ 32 पर ही टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। पैराग्वे ने उन्हें पेनाल्टी शूटआउट में हराकर टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट कर दिया, एंड जर्मनी ने अपनी वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली बार पेनाल्टी शूटआउट हारकर एग्जिट लिया। एंड अगर दूसरी तरफ नीदरलैंड्स की बात करें तो भाई, वो भी आउट। मोरक्को ने एक बार फिर दिया कि भैया, साल 2022 का सेमीफाइनल हम जो पहुंचे थे ना, ये किसी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये हम अपनी काबिलियत के दम पे पहुंचे थे। एक्स्ट्रा टाइम, यू नो, प्रेशर, पेनाल्टीज, और मोरक्को ने एक बार फिर से, वो कहते हैं ना, नर्व्स ऑफ स्टील, वो दिखाते हुए अपनी जगह जो है अगले राउंड के लिए पक्की कर ली। देखिए, बात इतनी है कि मोरक्को अब ऑफिशियली जायंट किलर्स बन चुके हैं। पिछले वर्ल्ड कप में स्पेन और पोर्चुगल को घर भेजा था, ये बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, एंड इस बार नीदरलैंड्स को भी। मतलब ये टीम सिर्फ डिफेंड नहीं कर रही है, ये वेट कर रही है और फिर एक ही अटैक में मैच को पूरी तरह से पलट दे रही है। एंड पैराग्वे की क्या कमबैक स्टोरी है यार। मतलब बहुत लोगों ने उन्हें नॉकआउट स्टेज तक सीरियस कंटेंडर भी नहीं माना था, लेकिन अब जर्मनी को एलिमिनेट करके इन्होंने पूरी तरह से सबको वार्निंग दे चुके हैं। बढ़िया है जी, और भी बहुत सारी बातें, कुछ एक्साइटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करूंगी, लेकिन अब से कुछ देर में। अगर आप इस वक्त वर्ल्ड कप फॉलो कर रहे हैं तो मुझे बताएं, आपको क्या लग रहा है कि इस बार दमदार एंट्री टॉप फोर में किसकी हो सकती है? कम ऑन गाइस, आपके सजेशंस का, आपके व्यूज का मैं वेट कर रही हूँ। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल, 90s का एक बहुत ही प्यारा इंडी पॉप गाना है कुणाल गांजावाला की आवाज में, गाना एंजॉय करें। अगर पसंद आए तो मुझे बाद में एक थैंक यू मैसेज जरूर भेजें। 5000 1896, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: करने और रहमान की खूबसूरत सी आवाज़ और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, क्या खूबसूरत गाना है यार। मतलब कुछ गाने जो होते हैं ना आपके दिल को छूते हैं यार, और उनमें से ये एक गाना जरूर है।
1: मिर्ची अंशु।
0: वैसे एक बात बता दूं, ओ ला ला एंड ओ मामा, ये दोनों का मोमेंट जो है ना एक बार फिर से इस बार के वर्ल्ड कप ने हमारी जिंदगी में जरूर दिया। देखिए यार, बहुत सारे अपसेट्स हुए, बहुत सारे ऐसे हेड टर्नर्स हुए जिनके बारे में आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, लेकिन अब ये बता दूं कि पिक्चर अभी सिर्फ शुरू हुई है, ये तो सिर्फ टीजर था। मतलब अगर इस वक्त कनाडा की हम बात करें तो कनाडा जो है जेन्युइनली हिस्ट्री स्क्रिप्ट करने में कहीं पीछे नहीं है। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप नॉकआउट में इतना आगे पहुंचकर दे हैव प्रूव देयर Not just hosts, they are genuine contenders. And एक disciplined team की सबसे खास बात ये होती है कि जहाँ पे एक तरफ fantastic team work होता है, वहीं दूसरी तरफ खुद पे यकीन रखना किसे कहते हैं, इस team ने ये बात जो है वो जरूर बताई है। अब देखिए, अगर एक सबसे important clash की मैं बात करूँ तो वो होने वाला है Portugal versus Croatia। एक तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड दूसरी तरफ लुका मॉड्रिक। शायद वर्ल्ड कप में दोनों लेजेंड्स का ये लास्ट डांस हो, एज इन परफॉर्मेंस हो। लेकिन क्रोएशिया को कभी अंडरएस्टिमेट मत करिए, 2018 के फाइनलिस्ट, 2022 के सेमीफाइनलिस्ट, मतलब प्रेशर सिचुएशंस में क्रोएशिया ने हमेशा अपना बेस्ट फुटबॉल गेम खेला है बॉस। एंड पोर्चुगल के लिए ये किसी भी तरह का कोई भी इजी फिक्स्चर नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर फॉर्म जो है काफी चेंज हुए, रेपुटेशंस जो है काफी फेड हुई है, लेकिन नॉकआउट फुटबॉल किसी को माफ नहीं करने वाला, ये बात जो है वो समझ आ चुकी है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। व्हिच इज योर फेवरेट टीम, डू लेट मी नो। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। अभी फिलहाल पंकज उदास की आवाज में खुशनुमा सा गाना मैं आप तक पहुंचाती हूँ। एंजॉय बंदी गाना अंशु।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
8: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
9: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
10: खूब मिलेगा, मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और कि पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

अरिजीत सिंह ने निकिता गांधी की खूबसूरत सी आवाज़ और बड़ा लवली ट्रैक इट इज़, ये खूबसूरत सा प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन ये खास बात भी इस वक्त आप तक पहुंचा दी जाए। Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ, लेकिन इसके साथ कुछ खास बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना भी चाहती हूँ। अगर लगता है कि भाई साहब इस वक्त किया जाए तो क्या किया जाए, जिंदगी में वेकेशन मोड ऑन हो चुका है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे शॉपिंग लवर्स की जिंदगी में बाहर आने वाली है, मतलब मेरे जैसे लोगों की जिंदगी में तो उस जगह का नाम है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे दोहा ट्रेड एंड शॉपिंग एग्जीबिशन हो चुका है शुरू, लेकिन ये चलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 4th of July तक। तो अगर आपको लगता है कि एक छत के नीचे आपको सारी चीजें चाहिए, चाहे खाने पीने की बात करें या तो फिर हम उन डेकोर्स की बात करें, कपड़ों की बात करें, मेकअप की बात करें, एक्सेसरीज की बात करें, मुफ्त में बहुत सारी टेस्टिंग की भी बात करें, नहीं हमारा आधा पेट तो उसमें भर जाते हैं जो मुफ्त में ये लोग आइटम्स टेस्ट कराते हैं, हाँ जी, तो ये सारी की सारी चीजें आपको जरूर मिलेंगी। गो हैव फन, जाओ यार, शाम के वक्त मौका भी है, दस्तूर भी है, पैसे भी है, सैलरी आ चुकी है। मीनवाइल चलिए एक काम करते हैं, आपको अगले आवर में बढ़ने से पहले संजू राठौड़ की आवाज में ये न्यू ट्रैक सुनाते हैं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु। ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला, ला,

0: श्रेया घोषाल एंड अरमान मलिक की खूबसूरत सी आवाज़, एंड व्हाट अ मैजिकल ट्रैक इट इज़ यार, क्या खूबसूरत सा फ्यूजन। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन बस आपके लिए गाना बजाया था, ये बात भी आपको बता दूं।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Ajay Anshu with you. वजन के मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ, एंड कोई तो खास बात है जो इस वक्त आपके बीच पेश करना चाहती हूँ। हैविंग सेड दैट, फिर से वक्त चला है कि भैया बॉलीवुड के प्रति जो हमारा प्यार है ना, उसे जरा बाहर निकाल दिया जाए। यार कोई तो आइकॉनिक सी फिल्म है, जिसका कोई तो फनी सा सीन है, जिसका डिपिक्शन मैं आपके बीच पेश करूंगी, आप सुनेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, बस मुझे ये बताएंगे कि ये फिल्म है तो है कौन सी। एंड सच कह रही हूँ, अगर बॉलीवुड लवर हो ये फिल्म ना पहचाना तो फिर क्या ही जाना, सच कह रही हूँ, 2+2 वाली बात हो जाएगी। करेक्ट आंसर रिकॉग्नाइज करने पर 5000-1896 पर, 5000-1896 वी विल गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या तो फिर मिर्ची अंशु, एंड आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज। देखो यार, खाली पीली गाड़ी चलाने से क्या ही मतलब, बातचीत करते हैं, मन जो है जरा लगा रहता है। सो हियर वी गो। अंकल तो कल्टी मार गए, अंकल आए ना आए, लेकिन आप बताएं कि अपनी इस डायलॉग के साथ हमारी जिंदगी में खुशी की बहार कौन ही लाए। भाई साहब ये फिल्म है तो है कौन सी। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट योर ऑडियो मैसेज। 5000-1896, 5000-1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। मीनवाइल सोनू निगम एंड अलका याग्निक की आवाज में अर्ली 2000s का एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप तक पहुंचाती हूँ। गाना पसंद आए तो थैंक यू बोलना मत भूलना। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बताओ भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे
2: कमाते?
3: तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत ने पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताना चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने ही काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा तू पर्स में, मेरी मेहनत की तूने ऐसी
2: जेब काटी, पर्स
3: काटे ऊपर से। तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: कर दे, मैं तो कर दूंगा।
3: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पैसा तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ों को।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था? मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स हॉट।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
7: हिट गाने
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मतलब आज शीरन ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपना कायल जो है ना वो कैसे किया जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड अब से कुछ देर पहले एक ऐसी फिल्म की कॉन्वर्सेशन भी मैंने आपके बीच पेश की थी, भाई साहब, जिसने मिठास लाई साथ में क्या स्पाइस एंड खटास का तड़का भी लेकर आई। और वो फिल्म कौन सी थी ये अगर मैं ही बता दूं तो फिर आप क्या करेंगे। चलिए एक बार फिर से आपके बीच वो कॉन्वर्सेशन मैं पेश करती हूँ। अभी भी अगर सुनते सुनते आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फिल्म है तो है कौन सी, तो जल्दी से करेक्ट आंसर भेजना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 5000186 5000186। We will get connected there. Instagram Mirchi One Kataria Mirchi Anshu. So here we go. अंकल तो कल्टी मार गए बेटा। चलिए देखते हैं लोगों ने क्या कहा है कि ये फिल्म है तो है कौन सी। बट टू ऑल दी वंडरफुल पीपल हु हैव रिस्पोंडेड, थैंक यू सो वेरी मच। यूसुफ, एज यूजुअल आपका जवाब जो है वो सबसे पहले आया। रजत, थैंक यू। अली, थैंक यू। अहमद, थैंक यू। राधिका, सुप्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर वॉर्म मैसेजेस। बहुत सारे नाम है लेकिन हाँ, कुछ नाम जो है जो रेगुलरली शो में पार्टिसिपेट करते हैं उनका मैंने आप तक पहुंचा। एंड प्रिंसी, थैंक यू सो मच यार, वी रियली अप्रिशिएट योर काइंड पार्टिसिपेशन इन रिस्पॉन्स। वेल, आप सबने चुका ये पूरी तरह से सही। साइकॉनिक फिल्म को कोई ना पहचाने तो फिर क्या ही जाने। इस फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना। भाई साहब, 1994 में राजकुमार संतोषी ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसने हंसी के ठहाकों की पूरी तरह से कतार लगा दी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया विनय कुमार सिन्हा ने एंड स्टार कास्ट ऑफ आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, परेश रावल, दैट टू इन डबल रोल। अब बोले इसमें कोई क्राइम मास्टर गोगो यानी कि शक्ति कपूर को छोड़े तो कैसे छोड़े। यार, इस फिल्म की सबसे खास बात क्या है पता है, जिस फिल्म को आज कल्ट क्लासिक माना जाता है वो रिलीज के टाइम बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। बिल्कुल ऑडियंस ने उस वक्त इतना प्यार इस फिल्म को नहीं दिया, लेकिन टीवी रीरन्स, रिपीट वॉच और आइकॉनिक डायलॉग्स ने इसे इंडिया की सबसे लव्ड कॉमेडी फिल्म में शामिल ही कर दिया। एंड आज भी तेजा हूं मैं, मार किधर है। इन सब डायलॉग्स को कोई भूले तो क्या ही भूले यार। एंड फाइनली टॉम एंड जेरी, हमें इंडिया के अगर कोई मिले तो वो है अमर एंड प्रेम। यार, ये फिल्म मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज में से एक है। क्या आपको भी ये फिल्म उतनी पसंद है जितनी कि मुझे? 5000186 विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। चलिए जी, अभी एक काम करते हैं, एक सुपर पावर पैक गाना मैं आपको मूवी सियारा से सुनाती हूँ, विशाल मिश्रा एंड हंसिका परीक की आवाज में। एंजॉय दिस ट्रैक। बंदी का नाम अंशु।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: लगा
6: मिर्ची। इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
8: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

खान की आवाज अलका याग्निक का साथ है एंड दिस रिक्रिएटेड वर्जन फ्रॉम द फिल्म बैड न्यूज. भाई साहब, इसमें भी वही मैजिक महसूस हुआ जो कभी पहले हुआ करता था. Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajay Anshu with you. Well, recreation की बात करूँ, वापस लौट के आने की बात करूँ, trends and cultures की बात करूँ, क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो पुराने दौर में काफ़ी मशहूर थीं, एक पल के बाद उन्हें आउटडेटेड कहा जाने लगा है. आज के डेट में वो सारे के सारे ट्रेंड्स एंड कल्चर्स जो हैं वो फिर से आ चुके हैं. गानों को अगर हम देखें, न जाने कितने गानों को रिक्रिएट किया जाता है. जब उन गानों को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई जो मैजिक इन गानों में है ना, वो आज के गानों में हो ही नहीं सकता. अलग ही वॉर्म. चलिए कपड़ों की बात करते हैं. मुझे बहुत अच्छे से याद है एक दौर में, एक वक्त में शिफॉन की साड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था एंड इसके साथ ऑर्गेन्जा की साड़ियों का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. धीरे धीरे ये क्रेज़ जो है फेड आउट हुआ क्योंकि दूसरे मटेरियल्स ने टेक ओवर कर लिया. शिफॉन तो एवरग्रीन रहा है लेकिन फिर भी, लेकिन आज की डेट में बूमिंग अगर कोई है तो फिर से वो है एक बार ऑर्गेन्जा. क्या गज़ब का क्रेज़, लोगों की उनके लिए दीवानियत. एंड अगर मैं पैटर्न्स की बात करूँ तो मुझे अच्छे से याद है जो स्ट्रेट पैटर्न्स, लूज पैटर्न्स की पैंट्स हुआ करती थी, जिसे आज के डेट में हम बैगी जीन्स के नाम से जानते हैं. भाई कितनी ट्रेंडिंग थी हम जब स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे. 90s वाले जो है इस बात से बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं. बीच में स्किनी जीन्स का कल्चर आया, यू नो टाइट फिटिंग के कपड़ों का कल्चर आया एंड आज की डेट में आप जिस किसी को भी देखेंगे, हर किसी के जहन में एक ही ख्याल होता है कि भैया मुझे ना ओवर कपड़े पहनने, ओवर एज इन जो ज़्यादा लूज हैं, जो थोड़े बैगी पैटर्न के हैं. कुल मिलाकर पुराने ट्रेंड्स जो हैं घूम फिर के अपना साइकिल पूरा करने के बाद लौट आते हैं एंड ये सिलसिला जो है ना जाने अरसों से चलता आ रहा है. चाहे वो मेगा आस्तिन की आप बात कर लें, 3/4 स्लीव्स की ही बात कर लें, पैटर्न्स एंड कपड़ों की बात कर लें. चलिए इस वक्त मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी. आपके हिसाब से 90s का या 80s का ऐसा कौन सा ट्रेंड था जो बीच में गायब हुआ लेकिन आपके हिसाब से आज वो फिर से लौट कर आया है? 5000 1896 5000 1896. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. लेकिन एक बात कहूँ, एक ऐसा ट्रेंड है जो मैं जेन्युइनली चाहती हूँ लौट कर वापस आए, वो है कैसेट्स एंड सीडीज़ का दौर. यार हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो चुके हैं ना कि उन फीलिंग्स को शायद महसूस करना आज की जनरेशन नहीं समझ पाएगी. यार क्या आपको लगता है मेरी बात सही है? सुर निगम की आवाज़ सुनिधि चौहान का साथ अगला गाना सुनाती हूँ. कुछ देर में होंगी और भी बातें. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Bollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi, it's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके इट शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डर। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi, it's hot.
3: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
4: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
3: Relative se advice lo to kehte hain.
5: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
6: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

वाला आदित्य रखारी की खूबसूरत सी आवाज है, अगला सुपर ट्रेंडिंग प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो आपकी जिंदगी में सही मायने में ट्रेंड क्रिएट करते हैं, जरा आज उनकी बात हो जाए।

Hey, welcome back. You're listening to Meethi Machi and this is Aryanshu with you. Bhai, zindagi jo hai na in dino, genuinely khuli kitab ki tarah ho chuki hai. Matlab ghar walon ko pata ho ya na pata ho, lekin social media ke zariye duniya awam ko zarur pata hota hai ki tumhari zindagi mein kya chal raha hai. Kai dafa to tumhari zindagi ki story ko hi dekhne ke liye tumhare ghar wale jo hai na tumhari Insta story pe jate hai. Having said that, jitne bhi social media freaks hain, aaj ka din bahut khas, bahut special, because today we are celebrating World Social Media Day. चलिए आपसे एक बात पूछते हैं. अगर आपकी जिंदगी में मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की बात करूँ, तो वो कौन सा एक ऐप है जिसके बिना आपकी जिंदगी पूरी तरह से अधूरी है. मतलब उस ऐप को जब तक आप खोले ना, आपके दिन की शुरुआत नहीं होती एंड आपका दिन जो है ना पूरी तरह से मुकम्मल भी नहीं होता. 5000 1896 5000 1896. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, लेट मी नो अपाय मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस. सोशल मीडिया के जरिए हम कनेक्ट कर रहे हैं कि किस एप्लीकेशन के बिना आपका दिन जो है भाई पूरा नहीं हो सकता, आपका काम पूरा नहीं हो सकता. बाकी डी ब्रीफिंग सोशल मीडिया एप्स के बारे में आपसे कुछ देर में करते हैं. अरिजीत सिंह के बाद असीस कौर का साथ इन्हें अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु.

0: emergency helpline.
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: Sir, मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है, पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: Oh man, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना, तो शिमला या मनाली चले जाओ.
2: रख
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983.

सिंह की आवाज अकासा का साथ एंड व्हाट अ पावर पैक ट्रैक इट इज। चलिए जी, ये गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन आपसे कुछ देर पहले जो गुफ्तगू शुरू हुई थी उसे पूरी भी कर लीजिए। वार्तालाप मिर्ची अंशु। Hey, welcome back. You're listening to मीठी मिर्ची and this is RJ Anshu with you. Well, अब से कुछ देर पहले हमने आज सोशल मीडिया एप्स पे जरा नजर डाली। वैसे तो रोज ही डालते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं पे डालते हैं, किसी और पे नजर डालते हुए भी उन्हीं पे ही डालते हैं। Having said that, today we are celebrating World Social Media Day. तो मैंने आपसे पूछने की कोशिश की थी कि वो कौन सा ऐप है जिसके बगैर आपके दिन का गुजारा नहीं होता। जितने रिप्लाईज आए, मैक्सिमम दो ऐप का जिक्र हुआ है, एक है व्हाट्सएप एंड दूसरा है इंस्टाग्राम। सबसे पहले जिन्होंने भी सोशल मीडिया चैनल का यूज करके हमें जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पक्के सोशल मीडिया यूजर हैं आप। लेकिन पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने 90s को दौर को देखने की कोशिश करूं, मतलब जितने भी 90s वाले बच्चे हैं इस वक्त जो मेरे साथ कनेक्टेड है, हमारा दिल बच्चा ही है, हम आज भी बच्चे हैं। यार, हमारे टाइम पे ना दो ऐप काफी पॉपुलर हुआ करता था, याद है वो याहू मैसेंजर, जिसमें न जाने कितने कैफेज में जाके घंटों चैटिंग की जाती थी, एंड दूसरा था ऑर्कुट। ये फेसबुक वगैरह का जमाना तो बाद में आया, उस वक्त ये दो ऐप कितने ट्रेंडिंग थे यार। लेकिन आज के डेट में इन ऐप्स को अगर हम देखें तो इनका ना हर किसी का अपना एक अलग काम हो गया है। फेसबुक की बात करूं, बाकी तो मुझे नहीं पता, दोस्त यार और रिश्तेदारों से ही हमें कनेक्टेड रखे ना करे, आंटी चाची ताऊ से जरूर रखता है। लेकिन इसके अलावा दिस इज द बर्थडे रिमाइंडर ऐप। हाँ, किसका बर्थडे है ये मुझे फेसबुक से ही पता चलता है। इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है इट हैज बिकम अ वैलिडेशन मशीन। जिंदगी आप सही स्टैंडर्ड से जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, ये आपको इंस्टाग्राम में जाके समझ में आता है। व्हाट्सएप की अगर बात करें, भाई ये ना गुड मॉर्निंग की यूनिवर्सिटी ज्यादा हो गई है। कुछ आए ना आए, लेकिन हर दिन काम के मैसेज से ज्यादा वो गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट के ग्रुप फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं। चलिए, लिंक्डइन की बात करें तो असल बायोडेटा जो है अब आप अपना खुद से नहीं बनाते, लिंक्डइन प्रोफाइल से लोगों को पता चलता है। चलो मैं आपसे एक बात पूछती हूं,

अगर आपके हिसाब से एक्स, जो कि एक्स ट्विटर है, एक्स को अगर कोई नाम देना जाए या इसका कोई पर्पस डिफाइन किया जाए तो वो क्या होगा, आपको क्या लगता है? ट्विटर जो कि अब एक्स हो चुका है, एक्स नाम इसका ट्विटर था, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द पर्पस और व्हाट शुड बी द टाइटल और टैगलाइन गिवन टू ट्विटर और एक्स? फटाफट से बताओ 5000-1896 5000-1896 लेट्स गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल हम तुम जब साथ हैं तो अलका याग्निक इन बाबुल सुप्रियो की आवाज में गाना भी हो जाए. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े होकर तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी मेरी,
0: मेरी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी। विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
4: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी
3: थी। कैच ऑफिसर ब्राउन, ऑफिसर ब्राउन टियरिंग थ्रू द सिटी ऑफ जॉयस डार्केस्ट सीक्रेट्स। ब्राउन स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5 फ्रॉम 12th June।
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
7: दोनों मिलेगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: कह रही हूँ, ये ना नाइंसाफी है एंड कड़क नाइंसाफी है।
1: मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Ajay Anshu with you. मुझे एक बात बताना, बचपन के दिनों में कभी अपने पापा, चाचा, ताऊ, दादा किसी को भी सनस्क्रीन लगाते हुए देखा है? भाई साहब, 32 रुपए के साबुन से वो नहाया करते थे एंड उसके बाद भी चाहे कितनी भी धूप में ये क्यों ना निकल जाए, कभी इनकी स्किन टैन नहीं हुई। मतलब लाल जरूर होती थी लेकिन एक बार फिर से 32 रुपए के साबुन से मुंह धो के आते थे एंड स्किन जो इनकी चमकने लगती थी। आज की डेट में हम 3200 का सनस्क्रीन भी क्यों ना लगाएं? भाई हम लड़कियों की स्किन 5 मिनट में बगैर इसके ऐसे टैन होती है कि इसे साफ होने में अगले 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन हाँ, आज के डेट में ये जो मेन है ना, ये काफी बदल चुके हैं। छुप छुप के चोरी चोरी हमारा ये 3200 का सनस्क्रीन ऐसे लगाते हैं अपनी शक्ल में जैसे कोई 32 रुपए का साबुन हो। रियलाइज किया आपने? जरा देखें आज की डेट में सूरज चाचू क्या ही कोहराम मचा रहे हैं।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
1: Weather update.
0: Well, today's maximum temperature is going to be somewhere around 47. Minimum is going to be around 35. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुद को fully hydrated रखें और हाँ, साथ ही वो जो sunscreen है वो आपका best friend होना चाहिए, बिल्कुल अंशु की तरह। Stay tuned to my team, बंदी का नाम अंशु। Enjoy.
1: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100 0813.

0: अच्छी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अनिता श्रीधर की पावर पैक आवाज, सुनिधि चौहान का तड़का एंड व्हाट अ गजब गाना इट इज फ्रॉम द फिल्म लव आजकल। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ये भी बता दिया जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is Aajay Anshu with you. जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए आ चुकी हूँ, लेकिन हाँ, मेरे अलावा कोई और है जो ऐसा एक्सपीरियंस एक बार फिर से आपकी जिंदगी में शामिल करने ही वाले हैं। भाई साहब, आम सी बात है लेकिन बड़ा खास एक्सपीरियंस दे जाएगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मैंगो एग्जिबिशन। बिल्कुल ठीक सुना आपने। वेल, इंडियन मैंगो एग्जिबिशन का जलवा तो आपने और हमने मिलकर खूब जिया, खूब देखा, खूब एंजॉय किया। एंड अब अगर बारी आ चुकी है तो पाकिस्तानी आमों के आम सी बात नहीं, खास एक्सपीरियंसेस को जीने की। सो तारीख जो है याद रखिए, 9th ऑफ जुलाई से लेकर 18th ऑफ जुलाई तक सूक वाकिफ के ईस्टर्न स्क्वायर में अब अगर आपको कोई मैजिकल एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो है पाकिस्तानी आमों का। वाइस नड़ी आम की बात करें या वो चौसा आम की बात करें, सारी वराइटीज कैटेगरीज आपके लिए लाई जाएंगी और इसके अलावा आम की बनी हुई डेलिकेसीज भी बिल्कुल आप एंजॉय कर पाएंगे। What are you waiting for? जितने भी पाकिस्तानी फैंस इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है, मुझे ये बता दो, जब मैं पाकिस्तानी मैंगो एग्जिबिशन में जाऊंगी तो मुझे खासकर कौन से आम को खरीद के लाना है? आपसे बेहतर सजेशन कौन देगा? 5000 1896 5000 1896। लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल विशाल मिश्रा की आवाज, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, फिल्म का नाम स्त्री, लेकिन गाना सबके लिए खूबसूरत सा। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: वेल, अरिजीत सिंह एंड हर्षदीप कौर की खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम रईस, एंड क्या रईसी से भरा हुआ ये गाना यार, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन हाँ, आपको रईस बनाने की पूरी तैयारी भी आज मैं करके आई हूँ। अरे दिल से रईस तो आप और हम हैं ही, इवेंचुअली एक दूसरे के दोस्त यार जो है, लेकिन पैसे से रईस भी आज आपको बना ही देते हैं। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आज अंशु विथ यू। देखो यार, जो तुम्हारी सैलरी वो मेरी सैलरी, तो बस मैंने सोचा कि तुम्हारी सैलरी तुम्ही को मुबारक देकर मैं थोड़ा रईस बना दूं। भाई साहब, अच्छे वाले दिन यानी कि पैसे वाले दिन हमारी जिंदगी में आ चुके हैं, एंड इस रईसी में थोड़ा सा और इंक्रीमेंट अगर कोई कर रहा है तो वो है आईपे का अच्छा वाला एक्सचेंज रेट। वेल, देखिए आज पैसे का क्या ही बोलबाला है। वैसे अगर आज ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीस 25.92, साथ ही पाकिस्तानी रुपीस 76.88, नेपाली रुपीस 41.43, बांग्लादेशी टका 33.92, एंड इसके साथ ही लंकन रुपीस डंका बजाते हुए 92.12। बढ़िया है जी, जितनों के पैसे आ चुके हैं फटाफट से ट्रांसफर करो, दिल करे तो थोड़ा सा मेरे में भी ट्रांसफर करो। नहीं, वो बांटने से प्यार और पैसे दोनों बढ़ते हैं ऐसे मैंने सुना। Just saying, नहीं है तो अपने अकाउंट में कर दो जी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक काम जरूर करना है, हमेशा टिक्के बने रहना है, सुनते रहना है कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट हबीबी, मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। वैसे एक्सचेंज रेट्स इज ब्रॉट टू यू बाय
1: लाया आई पे बेस्ट एक्सचेंज रेट्स, भेजो खुशियां और पैसे दोनों ही घर पे।
0: हाँ जी, घर जाने का वक्त तो चला है, तो पार्टी मोड ऑन करें अजय अतुल की आवाज में। एंजॉय।

0: तो नहीं।
1: यार कल ना मैं अपने एक स्कूल फ्रेंड से बात कर रही थी एंड एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब स्कूल में ये चीज़ हुआ करती थी ना तो मैं बड़ा चिढ़ा करती थी, लेकिन आज जब इसने ये बात कही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है।
2: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और हुआ ये था कि हम लोग टेक्स्ट पे बात कर रहे थे और मजाक चल रहा था दोनों के बीच में, एंड यू नो उसने फिर बात खत्म करी, आई टोल्ड हिम समथिंग, हाँ ही वॉज नॉट कीपिंग वेल, सो आई टोल्ड हिम गेट वेल सून मामू। तो उसने कहा ओके ठीक है मोटी। जब उसने ये लिखा ना तो मुझे हंसी आ गई, और हंसी के साथ ना देयर वाज दिस वार्मथ जो मुझे महसूस हुई, मतलब ऐसा लगा कि जैसे मेरे दिल को किसी ने ना एक बड़ी ही वार्म सी चादर में लपेट दिया। वो जो वर्ड था ना मोटी, ये आजकल के टाइम पर तो बोलेंगे कि ओ दिस इज बॉडी शेमिंग एंड ऑल, बट आई स्वेयर मुझे बिल्कुल भी ये बॉडी शेमिंग नहीं लगा। आई डिड नॉट टेक इट पर्सनली, आई रादर फेल्ट रियली हैप्पी अबाउट इट। यार इतने जमाने बाद किसी ने मुझे हक से मोटी कहा है। आई मीन स्कूल में ना ये हमेशा मुझे बुला करता था, ऐसे ही मजाक किया करता था, और मुझे बड़ा बुरा लगा करता था। मैं हमेशा चिढ़ा करती थी कि क्या है मैं मोटी नहीं हूँ, तुम मुझे मोटी नहीं बुला सकता। और आज जब उसने मुझे मोटी बोला तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस वर्ड में ना कोई बुराई नहीं थी बल्कि अपनाइयत थी। इस वर्ड में उसकी टांग खींचने की वो जो कोशिश थी वो थी, इस वर्ड में उसका मुझ पर हक जताना था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सीरियसली सालों में किसी ने मुझसे इस हक से बात ही नहीं करी है। वही वाली बात है ना कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो इतने बड़े हो जाते हैं ना कि सबके लिए बड़े हो जाते हैं, सब अपनी एक सीमा जो है वो मार्क कर लेते हैं, एक अदब से पेश आ रहे होते हैं, एक तरीके से आपके साथ पेश आ रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपने अपनों से मिलते हो ना तब आपको लगता है कि हाँ यार आज लगा कि हम वही दोस्त हैं और हमारे बीच में वही बॉन्ड है। रियलाइजेशन ये था कि यार कितने लोग हैं मेरी जिंदगी में जो इस हक से मुझे मोटी बुला सकते हैं और मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, और अगले वाले इंसान को बोलते हुए भी डर नहीं लगेगा, उसे हक लगेगा। और आपकी जिंदगी में अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसे हमेशा के लिए रखना, जरूरी होते हैं ये लोग अपने आसपास। चलो जी इसी बात पे पुरानी यादों को ताजा करते हुए मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ। आपसे कहती हूँ स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका वो रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लग
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है
2: मैडम? आई लव यू। हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू। मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ चारू, प्लीज बुरा मत माने यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
3: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जैसे इंसान की दो आंखें होती है ना, वैसे बॉलीवुड में भी दो आंखें हैं, एक 1993 की और एक 2002 की।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And today I'm going to talk about 1993, गोविंदा चंकी पांडे वाली आंखों के बारे में, जिसका कि ये गाना बड़ा ही सुपर डुपर हिट था। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज थी, बप्पी लहरी का म्यूजिक था एंड इंदिवर के लिरिक्स थे। और ये गाना, ओ माय गॉड, ये गाना तो आज तक भी हमें याद है। म्यूजिक ही ऐसा था यार। लेकिन आपको पता है, ये गाना आज जितना हिट है ना भाई, उस जमाने में यानी 1993 में तो ये इंस्टेंट हिट हो गया था चुटकी बजाते के साथ। बिकॉज इस गाने के अंदर परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लर्टेशन, मजाक और टपोरी रोमांस जो था। और इसी गाने की वजह से उस जमाने में गोविंदा भी बड़े फेमस हो गए थे। पर्दे के पीछे की बात यह है कि इस गाने को कंपोज रातों रात किया गया था, जब डेविड धवन ने बपीदा को कहा कि उनको ना कुछ रंगी नॉटी चाहिए, बिल्कुल ही गोविंदा स्टाइल कुछ होना चाहिए। बस क्या लाल दुपट्टा ऐसा निकल कर आया कि भाई मार्केट में भी लाल दुपट्टे छा गए, सो मच सो दैट कि वो तो फैशन में ही तब्दील हो गया। एंड एवरी गर्ल उस जमाने में वांटेड टू कॉपी द लुक फ्रॉम द सॉन्ग। और एक मजे की बात बताऊं आपको, वैसे इस बात में किसी को शक तो होगा ही नहीं कि इस गाने में जो कोरियोग्राफी है उसके अंदर गोविंदा के जो स्टेप्स है ना, वो किसी और ने नहीं, गोविंदा ने खुद कोरियोग्राफ किए। इनफैक्ट डेविड धवन ने क्लियरली बोल दिया था क्रू को कि यार गोविंदा को कोरियोग्राफ करने की जरूरत नहीं है, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। और चंकी पांडे लेटर ऑन मजाक में एक इंटरव्यू में ये बात बोली गए कि यार इस गाने के लिए अगर क्रेडिट देना है ना, तो गोविंदा की एनर्जी को देना चाहिए और मेरे हेल्पलेस एक्सप्रेशंस को देना चाहिए, विच आई वुड नॉट डिनाई। गोविंदा चीजी ऐसी हैं यार कि उनके आसपास कोई भी हो ना, उसको ओवरशैडो कर ही जाते हैं। आज नहीं कर पाते वो अलग बात है, लेकिन हाँ उस जमाने में तो 100% ये बात सही थी। चलो जी, इसी बात पे गोविंदा की इस मूवी से ना सही, लेकिन कूली नंबर 1 से दिस गाना कमिंग अप योर वे। एनर्जी की पिच को हाई रखते हुए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: अच्छी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आंखें भी दो होती हैं और आंखें मूवी में गोविंदा भी दो थे, लेकिन ये जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं था गोविंदा के लिए, यानी कि डबल रोल प्ले करना.
0: Mirchi Chat Room.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And in the film, आंखे गोविंदा ने बुन्नू और मुन्नू इन दो कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया था. बुन्नू जो कि डिसिप्लिन्ड बेटा था और मुन्नू जो कि एक टपोरी बंदा था. अभी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए गोविंदा घंटों आईने के सामने रिहर्स किया करते थे. इनफैक्ट जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो शुरुआत के जो दिन थे ना शूट के, उसमें तो कॉस्ट्यूम टीम जो थी वही कंफ्यूज हो गई थी कि बुन्नू के कपड़े कौन से और मुन्नू के कपड़े कौन से हैं. और एक बारी तो गोविंदा को उन्होंने जब मुन्नू का शूट होना था तो बुन्नू के कपड़े पहना के भेज दिया, जिसपे कि डेविड धवन भी हंस दिए और मिड शॉट बोल चुके कि यार ये बुन्नू और मुन्नू का कंफ्यूजन तो फिल्म के बाहर भी चल रहा है, फिल्म के अंदर तो अलग ही बात है. और इस फिल्म में कादिर खान साहब, जिन्होंने गोविंदा के फादर का रोल प्ले किया है, वो बड़े फेमस थे पूरे सेट पर बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो अपने डायलॉग्स ना खुद ही रीराइट किया करते थे. मतलब जो लिख कर आते थे वो परफॉर्म नहीं करते थे, अपने डायलॉग्स खुद ही बनाते थे. और इस बात से गोविंदा जो थे वो इतने खुश थे कि उन्होंने ये भी बात कही थी एक इंटरव्यू में कि उनके साथ काम करना ना एक एक्टिंग स्कूल की तरह है. क्योंकि जब इन दोनों लोगों का सीन हुआ करता था तो कादिर खान साहब तो ऑफकोर्स सीन के बीच में जबरदस्त इम्प्रोवाइज किया करते थे और उन्हीं से सीख के गोविंदा भी बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज कर लिया करते थे. इनफैक्ट कादिर खान साहब की खास बात ये भी है कि हमने इतनी सारी मूवीज देखी हैं जिनके की डायलॉग्स की हमने खूब तारीफें की हैं, खूब कदर करी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो फिल्मों के डायलॉग्स कादिर खान साहब ने लिखे हैं. वो फिल्मों के बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे, क्योंकि यार इसके लिए तो एक अलग ही मिड डे मोहब्बत शो होना चाहिए. और इसी बात पर कमिंग बैक टू द फिल्म आंखें, जो मैं बात बता रही थी ना कि कादिर खान साहब और गोविंदा जब सीन किया करते थे साथ में तो इम्प्रोवाइज करते रहा करते थे. इनफैक्ट एक सीन तो ऐसा था जिसमें कादिर खान साहब ने मतलब एकदम से ही एक नया डायलॉग जो है वो गोविंदा की तरफ फेंक दिया. अब गोविंदा जो थे उन्हें इतनी जोरों की हंसी आई जिसको कि उन्होंने कंट्रोल कर लिया सो दैट ये सीन खराब ना हो, और उस हंसी को कंट्रोल करते हुए कैरेक्टर में रहते हुए उन्होंने वो सीन दे दिया. एंड दैट स्पॉन्टेनियस मोमेंट इट मेड टू द फाइनल कट. वैसे एक बात तो है, अगर हम एक्टर बन जाए ना अपने करियर के हिसाब से भी, तो जो हम जिंदगी को बोलते हैं ना कि कितनी स्पॉन्टेनियस है, कभी भी कुछ भी हमारी तरफ फेंक देती है, वैसे ही हम एक्टिंग में भी जिंदगी की तरफ भी कुछ भी स्पॉन्टेनिटी दे सकते थे, यानी कि जिंदगी के साथ भी हम मन मन खेल सकते थे. बट एनीवेज, हम जहां हैं वहां अच्छे हैं, क्या बोलते हो? चलो जी, विद दिस स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
2: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिन सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
7: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Before Yami Gautam made it to the big screen, उससे पहले उन्होंने टेलीविजन में भी काम किया है बॉस, और वहीं से ही आया चांद के पार चलो, द शो जिसके कि हम सभी दीवाने थे, क्योंकि इस एक शो के अंदर तीन तीन हैंडसम बंदे थे बॉस।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एक बड़ा ही हटके से प्लॉट था इस शो का, जो कि उस जमाने में हुआ करते थे एक्चुअली, जहां पर बात होती है लव ट्रायंगल की, और ये लव ट्रायंगल होता है बिटवीन सना, अनीसा एंड रेहान। उसके बाद रेहान और सना पिक्चर से आउट हो जाते हैं और अनीसा जो है वो मुंबई चली जाती है, और वहां पर शी मीट्स अर्जुन एंड राहुल सिंघानिया, जो कि एक बड़े से मीडिया हाउस के ओनर्स थे और भाई थे। बस कहानी में उतार चढ़ाव इन्हीं चीजों को लेकर चलते रहते हैं, और ये स्टोरी बन जाती है इस बात को लेकर कि अनीसा को उस ग्लैमरस दुनिया में अपनी एक जगह बनानी है। अगर हम कास्ट की बात करें तो यार इतनी गुड लुकिंग कास्ट थी यार, एक तरफ यामी गौतम तो दूसरी तरफ विवान भटेरा, अमर उपाध्याय एंड अहम शर्मा, सच गुड लुकिंग गाइज मैन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं झूठ नहीं बोल सकती आपसे, लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता ही था यार कि कहानी को लेकर मैं ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ करती थी, बल्कि इन तीन गुड लुकिंग बंदों को देखने के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हुआ करती थी। दोज वर द डेज जब टेलीविजन पर भी इतने खूबसूरत चेहरे देखने को मिलते थे, तो व्हाई नॉट, वो भी ऑन अ डेली बेसिस यार, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। रीलिविंग द मेमोरीज ऑफ द शो चांद के पार चलो ऑन मिडडे मोहब्बत टुडे। एक काम करो ना, मुझे डीएम करके बताओ ना कि ये शो आपको कितना पसंद था या नहीं था, या याद है या नहीं है। डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana. Gambana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो,
2: इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गमा पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गमा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती
2: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गमा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए ऊ।

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँ चाहिए तेरा तेरा तेरा सुरूर। एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा।
1: oh
2: लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot. A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्डन समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म करण अर्जुन। ये वैसे सिचुएशन जो है ये दो लव बर्ड्स के बीच में है कि बंदी कह रही है कि यार जाती हूँ मैं, तो बंदा कह रहा है कि यार जल्दी है क्या, रुक जाना, बैठ के थोड़ा और टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जरा सोचो इसी सिचुएशन को अगर उठा के रख दिया जाए मेहमानों के ऊपर कि अगर वो यू नो जाने से पहले हेड्स अप दे रहे हैं कि अच्छा चलो हम चलते हैं, जाते हैं हम, तो अगला इंसान ये नहीं कहेगा कि जल्दी है क्या, अगला इंसान मन ही मन कहेगा कि हे चलो अच्छा ठीक है फाइनली अब जाओ जी, हमारा काम खत्म, हम जरा बर्तन किचन में रखने के बाद अपना टेलीविजन का कार्यक्रम देखेंगे या फोन देखेंगे या लेटेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन एटलीस्ट मेहमानों को एंटरटेन नहीं करेंगे। लिरिक्स सेम है लेकिन सिचुएशन बदल दोगे तो मतलब और मकसद दोनों ही बदल जाता है गानों का, नहीं क्या?
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड भाई अब बारी है मान ना मान करो गानों की पहचान की, और अभी यहाँ पे सीन ऐसा है कि मैं आपके लिए दो गानों की धुनों को मिक्स करके चला दूंगी और आपको गेस करना होगा कि ये दो धुनें कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं।

बस जी, अब आपको डीएम करना और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना इन दोनों गानों के नाम. एंड स्टे ट्यून्ड रहना है विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स ऑल

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
8: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
9: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
10: खूब मिलेगा,
11: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: यार हम तो इसी सवाल में उलझ के रह गए कि लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। इससे आगे तो हमने सवाल ही नहीं किया कि क्या ये गाना ओरिजिनल है या नहीं।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड हम तुम का। ये कंट्रोवर्शियल सॉन्ग कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो बेसिकली कंट्रोवर्सी का रुख जो है वो हम तुम के पंगे पर चला गया था। बट असल पंगा तो ये है कि ये गाना एक्चुअली कंट्रोवर्शियल हो सकता है बॉस, क्योंकि जतिन ललित की दी गई ये म्यूजिक इज नॉट रियली ओरिजिनल। वेल दिस गाना लड़की क्यों न जाने क्यों, इसका जो सिग्नेचर म्यूजिक है ना, दैट इज एक्चुअली पिक्ड अप एक आर्मेनियन सिंगर के गाने से। बंदे का नाम है एंडी और इस गाने का नाम है एंड माय हार्ट। गाना गोज दिस वे,

एंडी को शायद ये भी नहीं पता होगा आर्मेनिया में बैठे हुए कि एंडी के गाने का इंडिया में हो गया है अंडी वंडी शंडी। Stay tuned with me सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जॉन अब्राहम आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री.
3: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है. उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है. टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी. रणवीर सिंह एक्सट्रीमली फिट. एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन. ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार. एंड आई मीन holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who'll survive and come out.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood बोल्डा. Bollywood, Bollywood, Bollywood बोल्डा.
1: Only on मिर्ची, it's hot.
4: Our business is our business. None of your business.
5: Par didi, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
6: entertainment. Qatar ka number one radio station.
7: 89.6 FM, Mirchi 1.
8: It's hot.

0: Banshee Helpline?
1: Hi, Anjali. Banshee Helpline. Ball.
0: You know, I love twinning. But mera BF matching kapde kabhi nahi pehenta. Wo har baar na bol deta hai. Kya karun?
1: Hi. To galat thodi bol raha hai. Ladke skirt mein thodi acche lagte hai, Anjali.
2: Mast joke, Maran. Ya hans raha halkat hans.
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट
4: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
5: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: ये आवाज आज तो मुझे नॉस्टैल्जिया लगती है, लेकिन उस टाइम पर ये नॉइज भी थी और साथ ही साथ इस बात का हिंड्रेंस भी कि अब टीवी देखने को नहीं मिलेगा।
0: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, कुछ शोर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। आज के दौर में तो वो मुझे अच्छे ही लग रहे होते हैं, लेकिन जब उस टाइम पर केबल टीवी पर ये दिखाई दिया करता था ना, दाने दाने दाने, और यू अजीब सा वाइट स्टैटिक नॉइज आया करता था, तो बड़ी चिड़ुआ करती थी कि ओ नो, केबल चला गया, अब हम पिक्चर कैसे देखेंगे। और बड़ी इरिटेशन हुआ करती थी यार, बिकॉज दिस वॉज क्लियरली नॉट अ गुड साइन, क्योंकि हम सारे के सारे कजन्स जो थे ना, वो बड़ा मूड बना के टेलीविजन चालू किया करते थे कि यार अब होमवर्क हो गया, खेल लिए, अब हमारा टीवी टाइम है, अब हम केबल देखेंगे। लेकिन रखा रह जाता था हमारा टीवी ऑन टेबल और नहीं चल पाता था हमारा केबल, जब ये आवाज हमें सुनने को मिलती थी और वो टीवी पर दाने दाने दाने दाने अजीब से कीड़े मकोड़े देखने को मिला करते थे। कितना ही रिमोट चला लो या कितना ही टेलीविजन का नॉब घुमा लो, कुछ न होता था। और फिर आता था एक आखिरी आइडिया कि चलो एंटीने को हिलाकर देखते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. Na virtuala burka. Mirci, burka.
2: हेलो
3: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
2: बोल कौन रहा है?
3: नहीं, मुझे ये बता भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
2: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
3: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स में मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
2: तूने जेब काटी,
3: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
2: मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
3: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
2: जरा वापस दे दो यार।
3: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा? वो कौन देखेगा आके? कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
2: एड्रेस दे अपना, कर दे, मैं कर दूंगा।
3: एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
2: क्या करूं बताओ?
3: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कु।
2: सॉरी
3: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप, कुकड़ो कु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Luna,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें देखे जमाने बीत गए यार, लेकिन तुम्हारी याद अब भी दिल के किसी कोने में इंजन की हल्की टर टर की तरह गूंजती रहती है। कितनी सादगी थी यार तुम में, ना कोई डिजिटल डैशबोर्ड, ना भारी भरकम बॉडी, बस एक भरोसेमंद साथी जो हर सुबह तैयार रहती थी चाहे सर्दी हो या हो गर्मी। याद है मोहल्ले के लड़के लड़कियां बारी बारी से तुम्हें चलाने का ख्वाब देखा करते थे। तुम किक स्टार्ट नहीं पेडल स्टार्ट हुआ करती थी और हवा से बातें करती हुई निकल पड़ती थी सकड़ी सी गलियों से स्कूल कॉलेज ऑफिस तक। वो अलग बात है कि वो जो तुम हवा से बातें करती हुई निकलती थी ना, वो जमाने के हिसाब से स्पीड ठीक थी। आज के जमाने में तो 40 के ऊपर चला लेते हैं नॉर्मल में भी। बड़ी ही सादगी का दौर था वो जब तुम आई थी कि तुम्हें घर पे लाने पर ही लोगों के सीने चौड़े हो जाते थे। आज तो लग्जरी कार्स भी आ जाएं तो व्हाट नेक्स्ट की बात आ जाती है। वैसे तुम सिर्फ एक गाड़ी तो नहीं थी यार, तुम तो उस दौर की आजादी थी जब हेलमेट जरूरी नहीं था पर मुस्कुराना जरूरी था, जब हवा में उड़ते दुपट्टे और कानों में बजते तुम्हारे इंजन की आवाज किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगते थे। आज जब मैं किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होती हूँ ना, तो तुम्हारी याद बहुत आती है यार। बिना शोर के चलने का मजा तो है पर वो रूह से जुड़ाव नहीं है। तुम तो फैमिली का हिस्सा थी यार, किसी एड की तरह लूना है ना कहकर घर वाले बेफिक्र हो जाते थे। कभी किसी म्यूजियम में तुम्हें फिर से देखो ना, तो शायद वही पुरानी मुस्कान लौट आएगी और मेरा दिल एकदम से छलांग मार चुका होगा उस सादे प्यारे से जमाने की सवारी बनने के लिए। प्यार और यादों के साथ तुम्हें याद करती तुम्हारी सवारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची 'cause it's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाज में ऐसा कौन सा गाना है जो अब बनने वाला है कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना?
2: मिर्ची 90s कैसेट।
3: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?
1: दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो। और ये एग्जैक्टली वो मोमेंट था जब पू को रोहन से मोहब्बत तो नहीं, लेकिन हाँ एक इनक्विजिटिवनेस जरूर सी हो गई थी कि ये बंदा आखिर है कौन जिसकी तरफ मैं खींची चली जा रही हूँ। एंड ये गाना जो है इसका पिक्चराइजेशन एवरीबॉडी रियली लव्ड इट, कुछ हटके सा ही था। एंड इनफैक्ट करीना कपूर की कलरफुल वार्डरोब, द कलरफुल कार्स एंड जो डांसर्स इतने अतरंगी नजर आ रहे हैं, ऑल ऑफ इट मेड द सॉन्ग लुक वेरी मेस्मराइजिंग एंड मैजिकल। लेकिन इस गाने की एक और बड़ी खास बात है एंड दैट इज ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस। वेल, ये गाना फॉरेन कंट्री के किसी एक म्यूजियम में शूट हुआ था और वहां पर इस गाने को शूट करने के लिए जो मोहलत दी गई थी दैट वाज नॉट क्वाइट अलॉट। एक घंटे का या दो घंटे का इन लोगों को टाइम दिया गया था कि इतना टाइम है आपके पास, जितना शूट कर सकते हो कर लो। एंड एक गाने को शूट करने में बहुत टाइम लगता है बॉस, लेकिन ऋतिक रोशन का जो टैलेंट है रिगार्डिंग डांस वो यहाँ पर काम आया। एंड फराह खान जो इस गाने को कोरियोग्राफ कर रही थी वो इतनी खुश हुई और जबरदस्त तरीके से सरप्राइज और शॉक हो गई कि ऋतिक रोशन ने कितनी जल्दी इस गाने की शूट निबटवा दी विद इन द टाइम स्पैन जो कि म्यूजियम वालों ने दिया था कि आप इतने में ही इस गाने को शूट कर सकते हो, वरना सॉरी बॉस। एंड विदाउट मेंशनिंग दिस फैक्ट अबाउट दिस गाना, ये गाना मैं तो नहीं चला सकती थी। चलो, नाउ आई कैन प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू। जाते जाते ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हमें रही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कॉज इट्स हॉट।
3: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: Qatar's largest private medical center.
1: हाँ जी, तो मस्त और गौरव आ गया है। इतना ही बताने कि मौसम अभी भी अपनी जबरदस्त वाली गर्मी दिखा रहा है, लेकिन पेट्रोल के दामों में कितनी गर्मी आई है, नीचे गए हैं कि ऊपर, ये सब कुछ आपको पता लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको मस्त और गौरव के साथ रहना है यहाँ पर, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या कब कब चल रहा है। वैसे इन सब के बीच मस्त और गौरव आपको ये भी बता दे कि हमारे कतर में आने वाले टाइम में कुछ और बड़ी एक्टिविटीज को लेकर अनाउंसमेंट है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने कल ही कहा था कि हम किसी भी तरह मैरीटाइम एक्टिविटीज को नहीं करेंगे अंटिल फर्दर नोटिस। उस पर अभी भी रोक लगी हुई है। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपके कानों मुझे पहुंचानी है अगले चार घंटों में। दुनिया भर की बातें लेकर पंचायत करेंगे, गेम्स खेलेंगे, बस यही रहो मिर्ची पर हमारे साथ। मस्त मौला गौरव इज हियर, मिर्ची पर लेकर शाम शानदार। इट्स हॉट

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka.
1: Milci, burka. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगा?
2: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार
2: नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप, और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
3: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ वी लव इज डेड।
0: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
4: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी।
0: Catch Officer Brown. Officer Brown. Tearing through the city of joy's darkest secrets. Brown. Streaming on Hindi Z5 from 12th June. ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: बावले बिल्कुल नहीं होते हम, हालांकि अगर वहां होते तो जरूर हो जाते। अरे जब अपने वहां रहते थे पेट्रोल के दाम बढ़ते थे एकदम भगदल मच जाती थी, फटाफट सब लोग भरवा लो भैया कल से दाम बढ़ने वाला। लेकिन कतर में ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। यस, कतर एनर्जी ने अनाउंस कर दिया है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई क्या होंगे फ्यूल प्राइसेस।
1: What is the price of fuel, you beauty fuel? Fuel update.
0: वैसे तो मस्त मोरो गौरव, आपको बता दें कि सुपर ग्रेड पेट्रोल की कीमत होगी 2.10 पर लीटर। यस, कतरी रियाल 2.10 पर लीटर। वही प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल विल बी प्राइस्ड एट कतरी रियाल 2.05 पर लीटर। हालांकि अगर बात करें तो ये 2 रियाल थी जून में, लेकिन अब 0.05 हमें और ज्यादा देने पड़ेंगे एंड इसकी वजह से हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। अगर ऐसा सोचिए तो हमें लगता है यार सच में हम जहां से आ रहे हैं वहां अगर 10 रुपए बढ़ जाते थे एकदम से भगदड़ मच जाती थी। लेकिन थैंक यू कतर, कम से कम ये वाली फीलिंग तो आप हमें अच्छी देते होगी यार। पेट्रोल वेट्रोल लिए सोचो मत, बस गाड़ी लो और घूमे जा। वरना वहां तो जिस महीने दाम बढ़ जाते थे हम तुरंत साइकिल से लड़कियों का पीछा करते थे। 89.6 मिर्ची 1 मस्त मौला गौरव के साथ मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

एस दिलबर की आंखों का प्यार कीजिए, और अगर प्यार करते हैं आप एविएशन इंडस्ट्री से तैयार कीजिए खुद को। एस दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे कतर में पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल, जो कि हमारे कतर को बेहतरीन से खूबसूरत की तरफ बनाते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाते हैं। उन्होंने अब नया शुरू किया है कतर एरोनॉटिकल एकेडमी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रस अबू अबूद। यस, ये एक एफर्ट है जो हमारे कतर के एडवांस एजुकेशनल ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बनाएगा और आने वाले दौर में आसमान में जाने वाला हर स्टूडेंट बेहतरीन हो। एविएशन सेक्टर में किस तरह से एजुकेशन को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाए, इसके बारे में ही जो एविएशन सेक्टर को फ्यूचर में लीड करने वाले हैं उनके लिए ही ये पूरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो अशगाल ने अब लॉन्च कर दिया है कतर एरोनॉटिकल एकेडमी का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और आने वाले टाइम में एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और फ्यूचर के कुछ बड़े एरोनॉटिकल स्टार्स हमारे कतर में जो है वो निकलेंगे। एंड आई एम श्योर एविएशन इंडस्ट्री के लिए कुछ बेहतरीन टैलेंट अब कतर प्रोड्यूस करेगा एक बार जब ये प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू अशगाल, जो समय समय पर इस तरह की चीजें करते हैं ताकि हमारा कतर और खूबसूरत बने, क्योंकि कतर डिजर्व्स दी बेस्ट, यही तो कहता है अशगाल। मिर्ची इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है. क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
1: तो इंतजार खत्म. RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ.
0: अभी कॉल करें 3100813.
2: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
3: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हाँ जी, इनको लत लग गई है, लेकिन हमें अब लत लग गई है। हमें पता है हमारी गाड़ी तंदूर हो गई है, पानी हमें नॉर्मल ठंडा थोड़ा पीना है, हमें कोशिश करनी है गाड़ी छांव में खड़ी करें। और गर्मी आते ही ये लत हमें लग जाती, क्योंकि हमें पता है कतर की गर्मी माशाल्लाह।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: भैया दिन का मैक्सिमम तापमान आज 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा है। हाँ जी, अभी राइट नाउ टेम्परेचर 41 है। मैं तो कह ही रहा हूँ शाम वाम नहीं हो रही भैया, दोपहर हो रही है, सुबह हो रही है, रात हो जा रही है, और रात के बाद फिर दोपहर ही हो रही, सुबह कहाँ हो रही। 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाएं, 43 डिग्री सेल्सियस दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम अराउंड 30। एंड बड़ी बात यह है कि हवाओं की रफ्तार की वजह से गर्मी, लू के थपेड़े लगातार हमें मिल रहे हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 12%, ये जितना जितना कम रहे उतना अच्छा है। अभी धीरे धीरे बढ़ेगा तो हमारे पसीने ऐसे ही छूटेंगे। दोस्त पानी पीते रहो, बॉडी को हाइड्रेट रखो, खुले में काम नहीं करने दो किसी भी मजदूर भाई को। सुबह 10 से 3 बजे के बीच, 3:30 बजे के बीच, बस बोलो गौरव आपके साथ मिर्ची शॉट।
2: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: सर मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
1: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स

0: हाँ जी आ गया गाना और आपने सुन भी लिया कॉकटेल टू से, सुनाया किसने? अच्छा सबसे खास बात है फिल्म का नाम कॉकटेल टू, तो यही बंधु टू भी गाने का नाम है। फिलहाल आपके साथ मैं हूँ तो 5:04 हो गए बंधु।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और जैसे ही बच जाते हैं 5, आपको पता है मैं खिलाता हूँ जनाब। और पहचान कौन में आज जो आवाज सुनाने जा रहा हूँ जरा गौर से सुनिए और बताइए ये कौन सा खिलाड़ी है।
2: हम लोग बैंगलोर में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो मैं उस सीरीज में बहुत अच्छे फॉर्म में था, तो 201 बनाया मैंने फर्स्ट इनिंग में। तो मैं बैटिंग कर रहा था तो इंजमाम उल्लक स्लिप में खड़े थे, कामरान अकमल कीपर।
0: बहुत अच्छा खेला था मैं बेंगलुरु में, कामरान अकमल कीपर थे और इंजमाम उल्लक स्लिप पे खड़े थे। याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है किसकी आवाज़ है?
2: हम लोग बैंगलोर में टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो मैं उस सीरीज में बहुत अच्छे फॉर्म में था, तो 201 बनाया मैंने फर्स्ट इनिंग में। तो मैं बैटिंग कर रहा था तो इंजमाम उल्लक स्लिप में खड़े थे, कामरान अकमल कीपर।
0: 5:00 पर जवाबों का दौर शुरू हो चुका है, लोग अपने अपने जवाब भेज रहे हैं। आप भी वॉइस नोट कर यानी कि वॉइस में रिकॉर्ड कर कि गौरव हमको लगता है ये फला क्रिकेटर है, जितनी जल्दी हो सके 5:00 पर भेजिए क्योंकि अगली बार जवाब के साथ लौटूंगा।
2: बैंगलोर में टेस्ट मैच खेल रहे थे तो मैं उस सीरीज में बहुत अच्छे फॉर्म में था, तो 201 बनाया मैंने फर्स्ट इनिंग में। तो मैं बैटिंग कर रहा था तो इंजमाम उल्लक स्लिप में खड़े थे, कामरान अकमल कीपर।
0: बेंगलुरु में टेस्ट मैच है, इंजमाम उल्हक वहां पर स्लिप पे खड़े थे, यानी कि ये तो कोई टेस्ट क्रिकेटर है, लेकिन कौन सा है इसके लिए 5:00 पर वॉइस नोट अपना जवाब भेजिए। तब तक हम आपको लाल लाल चूड़ी दिखाते हैं मिर्ची पर छौर।
2: बैंगलोर में टेस्ट मैच खेल रहे थे तो मैं उस सीरीज में बहुत अच्छे फॉर्म में था, तो 201 बनाया मैंने फर्स्ट इनिंग में। तो मैं बैटिंग कर रहा था तो इंजमाम उल्हक स्लिप में खड़े थे, कामरान अकमल कीपर।
0: बेंगलुरु में टेस्ट मैच है, इंजमाम उल्हक वहां पर स्लिप पे खड़े थे, यानी कि ये तो कोई टेस्ट क्रिकेटर है, लेकिन कौन सा है इसके लिए 5:00 पर वॉइस नोट अपना जवाब भेजिए। तब तक हम आपको लाल लाल चूड़ी दिखाते हैं मिर्ची पर छौर।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करनी?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है, ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्ती उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता? आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बैक आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी
0: मेरी मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो भाई। मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।
2: बोला कुकड़ू कुकू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी। विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
4: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी।
3: कैच ऑफिसर ब्राउन, ऑफिसर ब्राउन टेयरिंग थ्रू द सिटी ऑफ जॉयज डार्केस्ट सीक्रेट्स। ब्राउन स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5 फ्रॉम 12th जून।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अंगारों पर चलता है इनका स्वामी, और हम आपके लिए अंगारों में से चीर कर आते हैं आपसे बातें करने। और जब देवी और सजनों हम आ गए हैं तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस वक्त अगर आप हमारे साथ हैं तो आप खेल रहे हैं और पहचान कौन में हम खिलाते हैं खेल, जहां पर आपको सुनाते एक आवाज और पहचान होता है किसकी है आवाज।
1: हम लोग बैंगलोर में टेस्ट मैच खेल रहे थे तो मैं उस सीरीज में बहुत अच्छे फॉर्म में था, तो 201 बनाया मैंने फर्स्ट इनिंग में। तो मैं बैटिंग कर रहा था तो इंजमाम उलक स्लिप में खड़े थे, कामरान अकमल कीपर।
0: और बताना है ये किसकी आवाज है।
2: हेलो हेलो ब्रदर गौरव भाई, ये सहवाग की आवाज है। वीरेंद्र सहवाग।
0: वीरेंद्र सहवाग, ओके।
3: नेम ऑफ द प्लेयर इज वीरेंद्र सहवाग।
0: ओके,
3: थैंक यू
0: ब्रदर, थैंक यू।
4: गुड इवनिंग, दिस इज द वॉइस ऑफ द वीरेंद्र सहवाग।
0: ओके,
5: गुड इवनिंग गौरव भाई।
0: बाय बाय, गुड इवनिंग
5: सहवाग भाई।
0: ओके,
6: हाय, गुड इवनिंग गौरव।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग
6: अभिलाष
0: जी। अभिलाष,
6: द वॉइस दैट यू प्लेड इज ऑफ वीरेंद्र सहवाग।
0: ओके,
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
4: भाई, कैसे ठीक ठाक है
0: भाई? बहुत बढ़िया,
4: बहुत मस्ती कर रहा हूँ यार, गाड़ी चलाते चलाते आपको।
0: बिल्कुल मेरा भाई,
4: नोटी बात से। तो मुझे लगता है कि इंडिया का खिलाड़ी है सहवाग।
0: इंडिया का खिलाड़ी है सहवाग। ओके,
7: वीरेंद्र सहवाग
0: यार, 100% करेक्ट आंसर है। यस, ये आवाज है वीरेंद्र सहवाग की, और वो बता रहे हैं एक मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो कि बेंगलुरु में टेस्ट क्रिकेट खेला गया उसके बारे में, एंड एकदम सही जवाब है। और मेरे साथ जो खेलते हैं उनको दिल से शुक्रिया, जो मैसेज टाइप करके भेजते हैं उनको भी दिल से थैंक यू। मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चांटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चांटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चांटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, it's hot. A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
7: अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. फिर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

कहीं ये गाने की बड़ी ब्यूटी अलग सी है। इन सब के बीच जब मस्त मौला गौरव आ गया है देवी और सज्जनों आपके पास, तो बातों की दुकान के साथ साथ खबरों की दुकान भी लगाते हैं और आपको बताते हैं कतर के कोने कोने की बात। और ऐसे में अब हम बात करेंगे हमारे कतर के ही बारे में। यस, और अगर हम रियलिटी मार्केट की बात करें तो रियल स्टेट सेक्टर में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यस, ये बहुत ही तेजी से एक रोबस्ट एक्टिविटी का हिस्सा बन रहा है। एंड मई 2026 की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन जो कतर में हुए ना वो 1.732 बिलियन के करीब पहुंच चुके हैं। 1.732 बिलियन कतरी रियाल। एंड कहा यही जा रहा है इस दौरान 425 रजिस्टर्ड डील्स हुई हैं, मतलब दुनिया भर में जो लोग हैं वो अब कतर में प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं। और जिस तेजी से यहाँ प्रॉपर्टी के आने वाले टाइम में वैल्यू बढ़ेगी उसको ध्यान में रखते हुए ये रियल स्टेट सेक्टर में काफ़ी बड़ी कह सकते हैं डील मानी जा रही है आने वाले टाइम में। एंड सिर्फ मई 2026 की बात करें तो 1.732 बिलियन जो कि 425 रजिस्टर्ड डील्स के थ्रू ही हैं। ये कतर के रियलिटी मार्केट की रियलिटी थी। एंड मैं कहता हूँ आप अपने सपनों का घर बनाने के लिए दुनिया भर में दिमाग लगाते हैं, लेकिन जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पर आप अपनी जीवन की कमाई कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे मौके अब आपको मिल गए हैं। ऐसे 10 एरियाज यहाँ के गवर्नमेंट डिसाइड किए हैं जो आपके लिए हैं फ्री होल्ड लीज की तरह। आप इन एरियाज में जाकर अपने लिए प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। तो भाइये अपने सपनों का घर बनाइए अपने ही कतर में और उसे नाम दीजिए आशिया, क्योंकि अगला गाना आशिया लेकर आए निखिल पॉल जॉर्ज मिर्ची पर थॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
2: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं। आप यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डा। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
3: Our business is our business. None of your business.
4: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment.
5: Qatar का number one radio station.
6: 89.6 FM. Mirchi 1. It's hot.

और मुस्कुराने ही लगे हैं सर, हम जब आपके पास आते हैं तो मुस्कुराहट आ ही जाती है। क्योंकि हमारी आपकी दोस्ती ऐसी है यार कि दोस्त जब साथ हो तो चेहरे पे स्माइल आनी लाजिम है, एंड ऐसे में आज हमारे चेहरे की स्माइल थोड़ी ज्यादा है। अरे भूल गए, तारीख 30 तनख्वाह आ गई। और देखिए इधर तनख्वाह इधर रेट्स भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। एक कसर रियाल के बदले इंडियन रुपीज आई पे ऐप पर मिलेंगे 25.94 रुपए 25.94 INR। वही 1 कसर रियाल के बदले अगर हम श्रीलंकन रुपीज की बात करें 92.15। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट से दाजो 1 कसर रियाल के बदले 41.45 का भलचो रेट है दाजो। हाँ जी 41.45 को नेपाली रुपीज का रेट छा। अगर उसके बाद हम जनाब पाकिस्तानी अशारिया की बात करें 76.88 पाकिस्तान रुपीज अगेंस्ट 1 कसर रियाल। बंधु अगर हम बांग्लादेशी टाका बात करेगा 1 कसर रियाल के बदले 33.97 तो 33.97 बांग्लादेशी टाका का रेट थी। लेको मस्त मोल गौरव के साथ ये सारा रेट यहीं पता लगता है। आई पे ऐप पर बहुत सारे और बेनिफिट हैं। क्या पहले ऐप डाउनलोड करो, खुद ब खुद दिखता जाएगा, अंदर अंदर जाओगे तो मिर्ची थॉट।

0: Luigi Helpline?
1: Yeah. Hi there. What's up? Tell me.
0: सर मुझे वेकेशन पे गोवा जाना है पर बॉस लीव ही अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या करूँ?
1: ओ मैन, गोवा के लिए अप्रूव नहीं कर रहे ना तो शिमला या मनाली चले जाओ।
2: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: बैरन बंजारा ये गाना सुना है किसने? सोचिए गाने का नाम बैरन और गाया बंजारों ने। फिलहाल के लिए मस्त मौला गौरव कहेगा, जबरदस्त लगता है ये गाना। और फिलहाल घड़ी का टाइम 6:04 का हुआ जाना।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: अब देखिए गुरु, टाइम आ गया है कि कानों की मिक्सी चला लीजिए, क्योंकि गानों की मिक्सी आ गई है।
1: गानों की मिक्सी।
0: दो गाने मिक्स होते हैं, आपको बताने होते हैं ये दो गाने कौन से हैं।

है गानों की ऐसी मिक्सिंग हुई है कि आज देखें कितने लोग पहचान पाते हैं। 5000 1896 पर जो भी इन गानों की मिक्सिंग को समझ चुका है मिक्सर ग्राइंडर में जो दो गाने डाले मैंने तो मुझे बताएं।

चलिए जी, मसमलों को अब ज्यादा बात नहीं करेगा, आपके फोन कॉल्स का इंतजार करेगा 5000196 पर। वॉइस नोट में अपना मैसेज भेजिए व्हाट्सएप पर कि गौरव जो दो गाने आप बता रहे हैं मुझे लग रहा है ये वो दो गाने हैं। 5000196 पर मसमलों को इंतजार कर रहा है। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virba la murga.
1: हेलो,
2: इज दैट वर्षा?
1: हु इज दैट?
2: वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारा एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारे गामा पा।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: धारे गामा पा। हमारे ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
1: थोड़ा बहुत गा लेती
2: हैं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारे गामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
1: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
1: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
2: नहीं नहीं नहीं, नॉट एग्जैक्टली कॉपी। आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में गाना आपने सुना ही होगा। गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हुआ, आप ऊ ऊ लगाएंगी। स्टार्ट वर्षा। वर्षा, वन सेकेंड, देखिए। ऊ

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट चाहिए, ऊ चाहिए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें,
5: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अगर तुम साथ हो ये गाना सुनाकर हम आपके साथ है नाम है मस्त मौला गौरव। और अभी भी इस घंटे हम और आप मिलकर खेलते हैं वो जिसे हम कहते हैं
1: गानों की मिक्सी।
0: और गानों की मिक्सी में सबसे पहले जो गानों के मिक्सचरण हमने किए वो कुछ यूं है। मैंने यही पूछा कि बताइए ये कौन से दो गानों का मिश्रण किया है मैंने अपनी मिक्सी में।
2: हेलो गुड इवनिंग, माय नेम इज विनेश कुमार एंड बोथ सॉन्ग्स आर सजनी रे संग बाय अरिजीत सिंह एंड सेकंड वन इज काला चश्मा जचता।
3: हाय गौरव, गुड इवनिंग, मेरा नाम सुधीर है।
0: जी सुधीर बताइए।
3: अभी आपने दो गानों का मिक्सचर सुना के गेस करने के लिए बोले थे कि कौन से गाने हैं। द फर्स्ट वन इज वो सजनी रे एंड द सेकंड वन इज तेनु काला चश्मा जचता है। थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स।
0: यस एवरीबॉडी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल सही, यही है वो दो गाने यानी काला चश्मा एंड सजनी रे लापता लिरिक्स से जो मैंने यहाँ मिर्ची पर सुनाया। और अब इनमें से एक गाना अब आपके लिए हम सबसे पहले परोसते हैं और दूसरा वाला भी थोड़ी देर में आएगा। मिर्ची शॉट।

0: दुआ और दवा दोनों लग जाए ऐसा हो। अरे जर्मनी के फैंस को, क्योंकि वो तो रो रहे हैं भाई, वर्ल्ड कप में जो हुआ है वो अविश्वसनीय, अप्रत्याशी और कह सकते सोचे नहीं था।
1: क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, सबका अपडेट बताएगा रे तिरम मिर्ची।
2: स्पोर्ट्स अपडेट।
0: हाँ जी, स्पोर्ट्स अपडेट में खलबली मच गई जब फुटबॉल वर्ल्ड कप से जर्मनी को बाहर जाना पड़ा और नीदरलैंड जैसी टीम भी बाहर हो गई। यस, हम आपको बताते हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि इतनी अच्छी तरीके से खेलने वाली टीमें छोटी टीम्स के सामने फेल हो गई। एक तरफ मोरक्को ने नीदरलैंड की टीम को बाहर किया, जर्मनी पराग्वे से हार गई, एंड क्या आज भी ऐसा ही कुछ कारनामा होने जा रहा है? यस, हम आपको बता दें, आज एक इंपॉर्टेंट मैच जहां पर कह सकते हैं आइवरी कोस्ट, जिनसे किसी ने उम्मीद नहीं की थी, वो भी अब अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ यार कि वर्ल्ड कप ऐसी चीज है ना कि यहां पर चार साल आप इंतजार करते हैं, आपके फैंस आपका इंतजार करते हैं कि यार हमारी टीम उतरेगी मैदान में, कमाल कर देगी, एंड फिर आपकी टीम इस तरह से हार जाती है। खैर, आज आइवरी कोस्ट एंड नॉर्वे की टीम आपस में भिड़ने जा रही है, एंड ये रात 8 बजे होगा। वहीं मेक्सिको और इक्वाडोर का मैच भोर में सुबह 4 बजे, और बड़ी बात यह है कि फ्रांस स्वीडन का मैच आज जब देर रात 11:59 के बाद 12 बजे का तो मैच शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर 6 टीमें अब आपस में भिड़ने जा रही हैं, एंड इनमें से कौन आगे बढ़ेगा यही देखना है। फ्रांस स्वीडन कौन बढ़ने वाला है, मैं गेस करता हूँ फ्रांस। बेल्जियम एंड सेनेगल ये अगले बार होगा। वैसे फिलहाल के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मेक्सिको की जीत मैं सोच रहा हूँ, आइवरी कोस्ट को नॉर्वे, हॉलैंड की टीम हरा सकती है, और फ्रांस इस बार फिर से आगे बढ़ेगा। अब क्या होता है क्या नहीं है तो वर्ल्ड कप में आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। लेकिन फुटबॉल एक ऐसा गेम जो बिल्कुल एड्रेनलिन रश को एकदम जबरदस्त तरीके से हमारे अंदर भर देता है, एनर्जी अलग सी आ जाती है। मिर्ची शॉट
3: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। एक सीरियल किलर, एक डिस्ग्रेस्ड कॉप और एक ऐसी डार्क मिस्ट्री जो आपको हिला देगी।
7: लव इज माय बिगेस्ट फियर बिकॉज़ लव इज डेथ।
6: विटनेस करिश्मा कपूर इन हर मोस्ट रूथलेस अवतार येट।
8: गलती भी हमारा और जिम्मेदारी भी हमारी थी।
6: कैच ऑफिसर ब्राउन,
9: ऑफिसर ब्राउन
6: टियरिंग थ्रू द सिटी ऑफ जॉयस डार्केस्ट सीक्रेट्स। ब्राउन स्ट्रीमिंग ऑन हिंदी Z5 फ्रॉम 12th June।
10: अर्ज किया है
11: इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

हाँ जी, अब आपको बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है, यानी कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल कहीं भी हैं और आपकी नौकरी खतरे में लगती है तो अब इसका डेटा ऑनलाइन ही तैयार। यस, कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया है किस तरह से एम्प्लॉयर्स अप्रूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एक्सपेट्रिएट डेटा एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और उनके पास जो भी कंपनी एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉयज के बारे में कुछ भी अपडेट करना है, अपना एक्सपेट्रिएट डेटा करना है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, वो मेत्राश एप्लीकेशन पर जाकर कर सकते हैं इससे पहले कि उनका जो वर्कर है वो कतर में आए, यानी कि उनके बारे में वो एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। इसके लिए बकायदा सेलेक्ट वीजा, देन क्यूवीसी, उसके बाद एडिट क्यूवीसी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, और यहां पर दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से दाखिल करनी है और ये आराम से आपको क्यूवीसी वेबसाइट के जरिए करने को मिल जाएगा। एंड मैं आपको बताऊं, मेडिकल एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट के साथ ही आप जैसे ही इंप्लॉई को अपने कतर बुलाते हैं वहां पर आप उसके लिए सारा का सारा डेटा वही फीड कर सकते हैं। एक बड़ी चीज जो बहुत काम आने वाली है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, अब वो परेशानी को दूर किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने। यस, मस्त बोलो गौरव आपके साथ, इससे नौकरी हो जाएगी और भी आसान और कतर आना आपके एम्प्लॉय के लिए भी इजी हो जाएगा। मिर्ची थॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मैं एक लड़के को एक महीने से डेट कर रही थी, पर मुझे आज पता चला कि वो मैरिड है, क्या करूं?
1: अरे अच्छा है ना, एक बार जो उसने कमिटमेंट कर लिया तो दूसरी बार भी कर ही लेगा ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La viva la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: हेलो भाई राज, एक ये बात बता भाई, तू तेरी इनकम कितनी है? हैं,
1: बोल कौन रहा है?
2: नहीं, मुझे ये बताओ भाई, कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे एक महीने में? कितने पैसे कमा? तमीज से ही बात कर रहा हूँ मैं, मेरी मेहनत में पानी फेर दिया। मैं तुम्हें बताने चाह रहा, तेरी जेब कटी थी कुछ दिन पहले, तेरा वॉलेट गायब हुआ है यहाँ से?
1: हाँ, कटी। कौन बोल रहा है?
2: मैंने काटी है तेरी जेब, 17.5 रुपए लेके घूम रहा है तू पर्स से मेरी मेहनत की। तूने ऐसी
1: तूने जेब काटी,
2: तेरा नंबर मुझे इसमें पड़ा मिला है, तू रखता क्यों नहीं इसमें पैसे?
1: तो मेरे पैन कार्ड और कुछ क्रेडिट कार्ड होंगे भाई।
2: हाँ, तो मैं क्या करूँ उसका?
1: जरा वापस दे दो यार।
2: पैन कार्ड दे दूँ मैं, तेरा क्रेडिट कार्ड दे दूँ, और जो मेरी मैंने तो पानी फेरा 17.5 रुपए, शर्म नहीं आती पर्स में? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है। मेरी मेहनत का क्या होगा? मेरी मेहनत का क्या होगा, वो कौन देखेगा आके?
1: 17.5 रुपए
2: कितने पैसे चाहिए? 2000 रुपए से कम आज तक जेब नहीं काटी मैंने।
1: एड्रेस दे अपना,
2: कर एक चीज कर दो मेरे लिए, मैं सारा पर्स तुम्हारा वापस कर दूंगा। करो मेरे साथ।
1: क्या करूं बताओ?
2: मेरे साथ बोलो कुकड़ो कू।
1: सॉरी
2: भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका पर्स किसी ने मारा था, मैंने नहीं मारा। और आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया यार, मुझे बड़ा तरस आया आप। अब मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए आप, कुकड़ो कू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: Yeah, पगला।
5: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
6: अरे यार, holiday season is here, और फिर वही gifting का tension. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर्स मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: काम ऐसा करो कि दुनिया आंख बंद कर कर आप पर भरोसा करे। और बिल्कुल ऐसा ही काम किया था हमारे कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्यूरिंग फीफा वर्ल्ड कप 2022। तभी तो आज यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में भी हमारे कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी को संभाल रही है। यस, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको सबने कतर की मदद ली है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वो वहां जाकर वर्ल्ड कप को एकदम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ पूरा करा पाए। और ये बताता है कि ये सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट नहीं है बल्कि ये हमारे कतर को मिला वो सम्मान है जो हमने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान पाया। और अब दुनिया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज पर भरोसा कर रही है इसी उम्मीद में कि हम जब मेहनत से कुछ करते हैं तो पूरी दुनिया आप पर भरोसा करती है। कतर एक बार फिर से ग्लोबली अपना इंपैक्ट बना रहा है और जिस तेजी से पूरी दुनिया कतर के हर बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में उनका साथ दे रही है वो दिन दूर नहीं जब ऐसी वजह से हम ओलंपिक भी होस्ट करेंगे। यस, तैयार रहिए एंड प्राउड ऑफ कतरी सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी मेहनत से उसे बेहतरीन तरीके से पूरा करा रही है और दुनिया का भरोसा जीत रही है। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, brought to you by KIMS Health Medical Center.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: अरे चाटा क्यों मारा?
3: चला पैसे निकाल।
2: किस बात के पैसे?
3: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
4: क्या बोला तूने?
2: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
5: क्या जोक मारा भाई?
2: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
3: कौन सा?
2: चाटा लगा
3: भाई लगा।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अर्ज किया है
8: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल July 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

सोचिए कोई शहर इतना खूबसूरत हो कि हर वक्त वहाँ एक अलग सी मस्ती हो, सिटी ऑफ जॉय नाम ही कह दिया जाए, और वहाँ हर इंसान की बोली में एक मिठास हो, लेकिन अचानक से वहाँ सब कुछ अगर बदल जाए तो यस। और कोलकाता में ऐसे ही कुछ बदल गया है जिसको रोकने के लिए आ रही ऑफिसर ब्राउन। कोलकाता जहाँ पर लोग हमेशा मदमस्त रहते हैं, सिटी ऑफ जॉय नाम ही है, एंड रसगुल्ला से लेकर वहाँ पर मिष्टी दोई का भी बड़ा बोलबाला है। लोग एक दूसरे के साथ हमेशा हंसते बोलते रहते हैं, काम में बिजी लेकिन उसके बाद भी मस्ती को ही वैल्यू देते हैं। उस कोलकाता में अचानक से उनकी होली जब खेली जाती है तो वहां पर माहौल गड़बड़ हो जाता है, और माहौल गड़बड़ हो जाता है फिर लोगों को लगता है आखिर ये कौन है इसके पीछे जो हमारे शहर को इस तरह से बदल रहा है। और ऐसे में आती है ऑफिसर ब्राउन, और जो लोग ये खून की होली खेल रहे हैं उनको अपनी गिरफ्त मिलेगी। एंड ये आप कहां देख सकते हैं, वन एंड ओनली प्लेस Z5। यस, अगर आपने अभी तक Z5 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि यहां पर ये ऑफिसर ब्राउन की सीरीज ब्राउन शानदार है, जहां पर करिश्मा कपूर खुद ये रोल प्ले कर रहे हैं। आई एम श्योर सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को पर्दे पर देखना और वहां पर इस क्राइम थ्रिलर को देखकर इसे सॉल्व होते हुए देखना अपने आप में एक अनूठा एक्सपीरियंस होगा। सो वेटिंग फॉर व्हाट, गो एंड गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ Z5, जहां पर मस्त मौला गौरव ने आपको याद दिलाया। एंड क्या बता, वीकेंड पे बिंज वॉच करके पूरे मस्ती से ये देखी लो 89.6 मिर्ची 1, मजा आएगा, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
2: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो फिजीक है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे industry में is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the Hindi film industry जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
3: A ring for the newly married. Cute little bangle for the newborn. अरे यार, holiday season is here और फिर वही gifting का tension. तो फिर मालबार gold and diamonds, gold and summer के साथ buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. और सुनो, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
5: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा.
4: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
6: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो. भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
7: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

जिगरे का ही खेल है फुटबॉल, जिगरे का खेल है। तभी तो भाई रैंकिंग में भले ही कमजोर हो टीम है, लेकिन अपने से अच्छी रैंकिंग की टीमों को हरा देती है। मोरक्को ने कल नेदरलैंड्स को हराया, पराग्वे ने जर्मनी को। क्या आज ऐसा ही अपसेट देखने को मिलेगा? नॉर्वे और आइवरी कोस्ट का मैच, फ्रांस और स्वीडन का मैच एंड मेक्सिको इक्वाडोर, इनमें से तीन टीमों का सफर आगे बढ़ेगा यानी कि राउंड ऑफ 16 के लिए, और तीन टीमों का सफर थम जाएगा घर के लिए। इस उम्मीद में कि जो होगा अच्छा होगा, मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा और इतना ही कहना चाहेगा कि टीमें मन लगाकर खेलें और जब वो हार जाएं तो वो करें जो जापान की टीम ने अपने फैंस के सामने किया। यस दे बाउ डाउन, दे सेड सॉरी टू देयर फैंस, पर क्या शानदार टीम है एंड स्पेशली डिसिप्लिन, डेकोरम एंड मैदान पर उनकी डेडिकेशन, हम सब उसकी सराहना करते हैं। एक शानदार मैच कल हमने देखा ब्राजील वर्सेस जापान का, और हमेशा याद रखिए कि आप खिलाड़ी कितने बड़े हो जाएं, अपने फैंस की वजह से आप बड़े होते हैं, ये कल जापान की टीम ने बताया। 89.6 मिर्ची 1 पर मी सिंह टर्बोबाइल लौटेंगे कल एक बार फिर से इनमें से कुछ टीमों की जीत और कुछ टीमों की हार की खबर के साथ मिर्ची पर। इट्स हॉट, बाय बाय।

0: अंजलि, बच ये हेल्पलाइन, बोल।
1: You know I love twinning, पर मेरा BF मैचिंग कपड़े कभी नहीं पहनता, वो हर बार ना बोल देता है, क्या करूं?
0: आए, तो गलत थोड़ी बोल रहे हैं, लड़के स्कर्ट में थोड़ी अच्छे लगते हैं अंजलि।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर। व्हाट्सएप
4: बज चुके हैं रात के 8, पुरानी जीन सुन रहे हैं आप मिर्ची पे।
5: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपका दाशी आपके साथ वेलकम बैक टू द शो जी। और एक बड़े ही इंटरेस्टिंग ख्याल के साथ शुरुआत करते हैं आप कि जिंदगी में ना मैंने ये डिसाइफर किया है, ये मुझे समझ में आया है कि हमेशा परमिशन मत मांगो, बाद में फॉरगिवनेस मांग लो, है ना। कि मतलब कुछ भी करने जा रहे हो ना तो अगर किसी से बोलोगे मैं ऐसा कर लूं क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करना, आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो उसको कर दो चीज को और उसके बाद ऐसा करो, अगर वो सही हो जाए तब तो ऑफ कोर्स हर कोई तारीफ करेगा, क्योंकि कोई सही चीज के तो खिलाफ जाना नहीं चाहता, है ना। लेकिन अगर वो गलत हो जाए तो बोलो ओहो अरे आई एम वेरी सॉरी यार, अरे वेरी सॉरी यार। हमेशा परमिशन मत मांगो, फॉरगिवनेस मांगो बाद में। यह गाना चंगेजी का शेर सुनो, कहते हैं कि गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, गुनाह गिन के मैं क्यों अपने दिल को छोटा करूं, सुना है तेरे कर्म का कोई हिसाब नहीं। अमा जब ऊपर वाले को लोगों ने ये फंडा चिपका दिया तो नीचे वाले तो चिल ही रहेंगे यार, मैं बता रहा हूं। डू नॉट आस्क फॉर परमिशन, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, आपका ताशी आपके साथ, मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Bana. Murga, murga. Na vid bala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगा?
3: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना रिक्शा वाले मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर मजहर इमाम साहब से। मजहर इमाम साहब दिल्ली में रहे और 1928 में इनका जन्म हुआ, 2012 में चल बसे और आधुनिक शायरों में बहुत विख्यात हुए। मजहर इमाम साहब का मेरा एक बड़ा पसंदीदा शेर है जो कि इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से इंसान जब अपने जिंदगी में खुश हो जाता है ना, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरे लोग की क्या दिक्कतें हैं। शेर लिखते हैं कि हमने तो दरीचों पे सजा रखे हैं पर्दे। दरीचे मतलब जो ओपनिंग होती है, जो दरवाजे होते हैं, छोटा सा दरवाजा होता है, ठीक है। हमने तो दरीचों पे सजा रखे हैं पर्दे, बाहर है कयामत का जो मंजर तो हमें क्या। वाह, और कितने सटीक तरीके से मजहर साहब ने बता दिया कि भाई ऐसे ही होते हैं लोग। लोग जब अपने घर के अंदर सब कुछ ठीक होता है तो बाहर जो भी चल रहा हो उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। हमने तो दरीचों पे सजा रखे हैं पर्दे, बाहर है कयामत का जो मंजर तो हमें क्या। आपको कितनी सच्चाई लगती है इस बात में? मुझे तो काफी दिखी। बहरहाल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने ताशी के साथ। It's hot.

0: on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
8: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
9: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
10: खूब मिलेगा, मिलेगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और मेरे किसी बड़े ने कहा था ना कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, इट्स अबाउट हाउ यू से इट। आप क्या मांग रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं, जितना ये जरूरी है उतना ही और शायद उससे थोड़ा ज्यादा जरूरी ये है कि आप कैसे वो मांग रहे हैं, कैसे वो बोल रहे हैं। जैसे अगर आप किसी से कहें कि अरे हंसते क्यों नहीं हो यार, हंसा करो, वो पलट के कह देगा अपने काम से काम का नहीं मतलब रखते हो, रखा करो, है ना। लेकिन अगर आप उससे ये कहें कि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो, कितना एक मासूम, कितना एक प्यारा तरीका है ये कहने का कि यार थोड़ा मूड को अच्छा करो, थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा लाइट हो जाओ, है ना। बस यही बात होती है कि कहने का जो तरीका है अब्दुल हामिद आदम साहब ने क्रैक कर लिया कि भाई कैसे कहना है कि मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया करो। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, आपका दाशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
0: Only on Mirchi. It's hot.
3: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
4: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
3: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
4: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
3: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
4: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
3: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
0: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
6: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: कि आपका ताशी आपको नजर करे आज का ताशी अनप्लग्ड और ये जो नगमा है ये मेरे दिल के बड़ा करीब है क्योंकि जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा है और जगजीत सिंह जी ने इसे गाया है. इट्स वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स एंड आई एम सिंगिंग इट जस्ट फॉर यू. तुमको देखा तो ये ख्याल आया तो

0: ऐसे ही और नगमों, गजलों, किस्सों के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल. आपका दाशी है आपके साथ. इट्स हॉट.
1: क्या कहा?

0: Mirchi Helpline?
1: Mirchi Helpline, what is the question?
0: मैं अपने पौधे को पानी दे देकर थक गया हूँ, पर पौधा बड़ा ही नहीं हो रहा, क्या करूँ?
1: अरे गोचू, तो तेरे को किसने बोला था कि आर्टिफिशियल पौधा ले?
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हल्का ढास।
3: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: क्या आपको भी एक टाइम पे परवीन बाबी और जीनत अमान में बड़ा कंफ्यूजन होता था, दोनों एक जैसी लगती थी?
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।
2: आपको भी ऐसा लगता था तो गिव मी अ हाई फाइव।
1: छोटी होती ऐसी कंफ्यूजन बहुत होती थी ना, जैसे मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती थी नेल्सन मंडेला और मंडल कमीशन में।
2: वेल लेट्स नॉट गो देयर, पॉलिटिकल मामला है, सेंसिटिव मामला है, हम फिल्मों पे वापस आते हैं।
1: दो गानों में भी मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी, एक तो ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे और एक ओ मेरी सोनी। बड़ी मुश्किल से बड़े टाइम के बाद क्लैरिटी मिली कि ओ मेरे सोना रे तीसरी मंजिल का गाना है, शब्बी कपूर साहब आशा पारेख पे पिक्चराइज्ड, एंड ओ मेरी सोनी मेरी तमन्ना यादों की बारात का गाना है, पिक्चराइज्ड ऑन विजय अरोड़ा एंड परवीन बाबी एंड जीनत अमान। गाना सुन लेते हैं, मैं हूँ चारू आपके साथ,
2: आप सुन रहे हैं।

0: हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कहाँ पे है?
1: थैंक यू सो मच, लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है।
0: तो फिर कहाँ पे भाई तेरा बर्थडे?
1: मेरा भी 3 महीने बाद बर्थडे आना है।
0: तो 3 महीने बाद है तो तू बता अब रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया? यहाँ मैंने पूरे ग्रुप को जमा करके तुझे विश करना चाह रहे हैं, हम पागल खड़े हैं? हैं राकेश, तेरे को पहले नहीं बताना चाहिए था ये?
1: भाई मैं राकेश नहीं हूँ, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मैं राकेश नहीं हूँ।
0: तो सो के जाग रहा है, राकेश भी नहीं है, तेरा बर्थडे भी नहीं है, तू पहले नहीं बता सकता था? दांत फाड़ रहा है अब तेरे को बोलने परेशानी?
1: तमीज नहीं है बात करने की?
0: तमीज तेरे को तमीज होनी चाहिए यार। यहाँ पे हम 50 आदमी खड़े हो गए, तेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, तेरे को पहले बोल देना चाहिए क्यों कर रहे हैं? मैं राकेश नहीं हूँ। नवाब साहब पहले पूरा सुनेंगे हैप्पी बर्थडे, फिर मेरे से कहेंगे यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा बर्थडे नहीं है, ना मैं राकेश हूँ। तू है कौन यार?
1: तू एक बार बता, मेरा नाम ना राकेश है ना मेरा बर्थडे है, तू मेरे को जबरदस्त उल्टा सीधा बोले यार।
0: उल्टा सीधा मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू एक बार बता, तेरे को पहले बताना नहीं चाहिए था कि तेरा बर्थडे नहीं है? तो तेरा बर्थडे देख के क्यों नहीं आता, आज क्यों नहीं आया तेरा बर्थडे? बाहर आ गया यार, केक तो खा ले।
1: हेलो,
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: तूने दिमाग खराब कर रखा है मेरा, मेरी मेरी
0: मेरी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लो भाई, मैं तुम्हारा बर्थडे नहीं है, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे नंबर मिला दिया था। तुम्हारा बर्थडे नहीं मना रहे हैं, तुम्हारा मुर्गा मना रहे हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और तुम अपने नाम बताएंगे प्लीज अपना?
1: मैं समीर बोल रहा हूँ।
0: समीर, तुमसे ये मेरे साथ की जो टीम है ये कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लो एक सेकंड।

0: Mirchi Morga na Fate ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, again.
2: हाय सर।
0: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: भाई अनुराधा पौडवाल वैसे तो 90s की प्रोमिनेंट सिंगर रही हैं, लेकिन इनके करियर की शुरुआत 70s में हुई थी एंड शी रोज टू फेम इन 80s। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो उन दिनों किस तरह से रिकॉर्डिंग होती थी, किस तरह से गाने बनते थे, क्या खूबसूरती होती थी, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उन दिनों में ये होता था कि इफ देर वॉज अ स्मॉल मिस्टेक ऑल्सो तो एवरीबडी हैड टू मतलब दोबारा से पूरा गाना पड़ जाता था, बजाना पड़ जाता था। यू हैड टू बी मोर प्रिपेयर्ड कि ये नहीं होता था कि चलो एक वर्ड गलत गा दिया तो उतना एक वर्ड आज के जैसा। एंड देन ऑफकोर्स एवरीबडी न्यू कि क्या गाना चल रहा है, तो म्यूजिशियंस मतलब फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ हम लोगों की कभी कभी रिकॉर्डिंग्स में 2-3 घंटे लग जाते थे, कभी दिन भर लग जाता था। और मुझे याद है कि स्पेशली सुभाष घाई जी के लिए तो 2-2 दिन तक रिकॉर्डिंग चलती थी, तो उस वक्त की वो ब्यूटी एक अलग ही थी,
0: ब्यूटीफुल। लेकिन अभी हम जो गाना सुनने वाले हैं वो ऐसा ब्यूटी टाइप का नहीं है, वो थोड़ा बीस टाइप का है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसको एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: भाई लगा।
7: मिर्ची इट्स हॉट।
8: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
9: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
10: आएंगे दीदी।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन।
14: इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

आपको पता है देवानंद साहब अपनी डिस्कवरी जीनत अमान को किस नाम से बुलाते थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो उनको बुलाते थे जीनी बेबी कह के। जी, एंड अपनी बुक में उन्होंने ये मेंशन भी किया है कि उनके मन में जीनत अमान के लिए एक टाइम पे फीलिंग्स आ गई थी। सो ये वन साइडेड फीलिंग्स थी, बिकॉज जीनत अमान यूज टू लुक अप टू हिम एज हर मेंटोर ओनली। हाँ, ये लव इश्क प्यार मोहब्बत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सीन क्रिएट कर देता है कई बार, और आप भी एक बढ़िया सा सीन क्रिएट कीजिए ना जिसमें आपकी मुस्कान जा रही है कान तक। और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: नहीं! बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
2: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: एक बहुत ही सुंदर गाना दो सुंदर आवाजों में। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1969 की फिल्म प्यार का मौसम का गाना तुम बिन जाऊं कहां, जो मोहम्मद रफी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि दो अलग अलग किरदारों पे पिक्चराइज था। एक तो फिल्म के जो हीरो हैं शशि कपूर साहब, उन पे जो पिक्चराइज था वो रफी साहब की आवाज में था, बिकॉज ये एक रोमांटिक सॉफ्ट वर्जन था। इसके वीडियो में शशि कपूर साहब हैं और आशा पारेख जी हैं, इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग। लेकिन जो दूसरा वर्जन है किशोर कुमार साहब वाला, वो भारत भूषण जी पे पिक्चराइज था। भारत भूषण जी जो शशि कपूर के फादर प्ले करते हैं, और इसका आप वीडियो देखेंगे तो वो गाना गा रहे हैं अपने उनकी फैमिली साथ में, उनकी बीवी और बच्चा साथ में है, छोटा सा बच्चा और उनकी वाइफ। तो बिल्कुल ही अलग फील है, रफी साहब वाला जहाँ रोमांटिक है, ये वाला सोलफुल है। और यहाँ हम कौन सा वर्जन सुनने वाले, वेल जो यूजुअली सुनते हैं उससे डिफरेंट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: तुम

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
1: सर, मैंने IIM में जाने के लिए बहुत ट्राई किया, 2 साल कोचिंग भी करी, फिर भी नहीं हो पा रहा, क्या करूं?
2: अरे तू ये सब मत कर, तू गेट नंबर 2 से जा, वो खुला ही होता है और मैं वहीं से जाता हूँ।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: ऐसे ही लाइफ के टेढ़े सवालों का लॉजिकलेस जवाब चाहिए, तो भेजो आपके क्वेश्चंस मिर्ची हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप ऑन 8422983983। इट्स हॉट।

0: मिड 60s में FTII पुणे से अपना एक्टिंग कोर्स करने के बाद, बॉम्बे में काफी स्ट्रगल करने के बाद जब काम नहीं मिल रहा था तो असरानी साहब FTII में ही एक्टिंग के प्रोफेसर बन गए, साथ साथ अपनी स्ट्रगल भी कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी इसी इंस्टीट्यूट में गेस्ट फैकल्टी थे। असरानी साहब अक्सर उनसे मिलते रहते थे, काम मांगते रहते थे। एक बार ऋषिदा जब गुड्डी फिल्म की कास्टिंग के लिए इंस्टीट्यूट आए तो क्या हुआ, सुनिए एक बार असरानी साहब ने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: उनके दो तीन असिस्टेंट आए साथ में आए थे, मैंने उनको पूछा कि भाई कौन सी फिल्म है, क्या है, बोले कुछ नहीं, एक लड़की ढूंढ रहे हैं वो गुड्डी के लिए, बाकी तो कुछ नहीं, और ये बताते कुछ है नहीं, कहानी में कौन है, क्या है क्या है। बोले काफी मैंने पूछा उनसे तो बोले हमारा नाम लेना मत यार तुम, एक छोटा सा रोल है जो एक लड़का गाँव से आता है हीरो बनने के लिए और एक्स्ट्रा बन जाता है जूनियर आर्टिस्ट, मगर हमारा नाम मत लेना। उसमें गुलजार साहब भी थे, सब बता के चले गए। अब वो आए रिश्ते वहाँ से लड़की का जय बहादुर से मिलके वापस कार में बैठने लगे, तो मैंने कहा दादा हाँ बताएगा, हम बताएगा भाई, बट मैंने कहा ये सेलेक्ट हो गए क्या, नहीं नहीं अभी स्क्रीन टेस्ट होगा हम देखेगा। ओके मैंने कहा दादा हमारा भी कुछ तुमको बोला ना, हम करेगा करेगा, मैंने कहा 3 साल हो गया करेगा करेगा बोलता, कब करेगा।
0: वेल इसके आगे क्या हुआ सुनेंगे थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: इज दैट वर्षा? वर्षा, मैं निखिल बोल रहा हूँ, एक्चुअली मुंबई से मैं बोल रहा हूँ। हमारे एक रियलिटी शो शुरू होने वाला है जिसका नाम है धारेगामा पा।
3: क्या नाम बताया आपने?
4: धारेगामा पा। हमारा ये रियलिटी शो है, मुझे कहीं से पता चला कि आप अच्छी सिंगिंग कर लेती हैं, अच्छा गाना गा लेती हैं, और किसी ने मुझे बताया कि आप हिमेश रेशमिया को भी कॉपी कर सकती हैं, उनके गाने आपको पसंद हैं।
3: थोड़ा बहुत गा लेती
4: हूं। ओके, मैं आपको टेलीफोन पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर धारेगामा पा में आप शॉर्टलिस्टेड हो गई तो हम आपको फिर इस रियलिटी शो में पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आपको गाने का मौका देंगे।
3: बट ये रिकॉर्डिंग आप फोन पर ही करेंगे?
4: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझिए। आपको जो भी गाना देंगे आप उसमें हिमेश रेशमिया का जो आपने मशहूर सुना होगा अब तक, ओ राइट, वो जो एक उनका सुर है,
3: लेकिन उनकी कॉपी करनी पड़ेगी।
4: नहीं नहीं नहीं।

नॉट एग्जैक्टली कॉपी, आप कोशिश करिएगा कि हिमेश रेशमिया स्टाइल में. गाना आपने सुना ही होगा, गाना है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे. गाने की शुरुआत में, गाने के बीच में, अंतरा जब खत्म हो, मुखड़ा जब शुरू हो, आप ऊ ऊ लगाएंगी. स्टार्ट वर्षा. वर्षा वन सेकेंड, देखिए ऊ.

0: वही वाली ऊँ चाहिए जो पहले करी थी आपने, बहुत अच्छी करी है।
1: देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा।
0: अरे गड़बड़ आपको क्या प्रॉब्लम है, हमारा शो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, धारेगा में पानी सर। स्टार्ट
1: मिल गई मंजिल मुझे,
0: ऊँचाइए ऊँचाइए। तेरा तेरा तेरा सुरूर, एक्चुअली ये तेरा कसूर भी नहीं है
2: वर्षा, ये किसी का कसूर नहीं होता, ये कसूर उनका होता है जो लोग मुझे नंबर देते हैं और ये कहते हैं कि उनका मुर्गा बनाया जाए। वर्षा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा लेकिन
1: माय गॉड, अजीब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगा।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
3: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1, it's hot.
5: Purani Jeans with Charu, only on

0: ये लेट 70s की बात है जब अस्टानी साहब FTII पुणे में एक्टिंग के प्रोफेसर का काम भी कर रहे थे और वीकेंड्स पे बॉम्बे जाके फिल्मों में काम भी ढूंढते थे। तब डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी गुड्डी फिल्म की कास्टिंग के लिए FTII पुणे आए और किसी तरह ऋषिदा के असिस्टेंट से बात करके असरानी साहब ने ये पता लगा लिया कि इस फिल्म में एक ऐसा रोल है जो शायद उनके लिए ठीक हो सकता है। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में असरानी साहब ने क्या कहा था।
1: तो मैंने उनको बोला, दादा गाड़ी में बैठ कर, एक है एक लड़का आता है गांव से हीरो बने। कौन बोला तुमको ये? बोला कौन? की रे होशे की रे, सब जो जितने असिस्टेंट थे उनको, तुम किसने बोला कि होशे की? कौन बोलता कहानी? बाप रे, मैंने बोला माफ कर दो मुझे मत। बोला बोला ना हम चिट्ठी भेजेगा, बड़े डांटते आके चले। और उस वक्त क्या था, जब चिट्ठी कोई किसी की आती थी बाहर से कहीं से भी, नोटिस बोर्ड पे लगा देते थे वहां से पिकअप कर लो। तो मैं रोज देखता था कोई चिट्ठी आ जाए। फिर एक दिन चिट्ठी आई और उसमें नाम था जया बहादुरी। इससे पहले कि वो पहुंची बॉम्बे, मैं पहुंच गया बॉम्बे। वो जाके मैंने बोला, दादा बोले तुमको थोड़ी चिट्ठी लिखा है। फिर उनको दया आगे होगी, फिर स्क्रीन टेस्ट हुआ उनका और ये दो सीन का रोल मुझे दिया उन्होंने गुड्डी में, वहां से शुरू।
0: और यहां से जो शुरू हुआ तो 50 साल का एक मैग्निफिसेंट ब्रिलियंट करियर बन गया। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू, आपके साथ आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: देख रे एक ट्रक आ रहा।
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा
4: लगा
7: मिर्ची। इट्स हॉट

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब।

0: ओ भाई भाई भाई भाई भाई भाई, पहली फुर्सत में जाके एक फिल्म देखो।
1: रिची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो मेरा मूवी रिकमेंडेशन है 1973 की फिल्म दो फूल, और इसमें दो फूल कौन है? पुट्टन और छुट्टन, दो भाई लुक्खे लफंगे लेकिन रईस। रईस बाप की बिगड़ी औलाद जो हार्मलेस है लेकिन आवारा है, जिसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। और ये किरदार निभाए हैं पुट्टन एंड छुट्टन वाले महमूद साहब और विनोद मेहरा जी ने।
0: जी
1: इसमें अशोक कुमार भी हैं जो इनके फादर बनते हैं, जीवन साहब भी हैं, और महमूद साहब का डबल रोल है, इसमें एक बंदर भी है। तो बेसिकली इन केयरफ्री केयरलेस लड़कों को इनका बाप घर से निकाल देता है, उसके बाद ये क्या शरारत करते हैं और कैसे फिल्म आगे बढ़ती है और क्या गचड़ पचड़ कंफ्यूजन होती है, इज द होल फन। महमूद साहब भाई क्या कॉमेडी उनकी, हैट्स ऑफ वंस अगेन। ए बाय द वे, इसी मूवी से इंस्पायर्ड है 1993 की मूवी आंखें, गोविंदा चंकी पांडे वाली, तो मिस मत करना। फिल्म का नाम दो फूल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: आई आई आई आई आई आई आई।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 89.6
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

वो एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना, वो तो आपको पता है उसके बारे में। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही फिल्म फेस्टिवल जिसमें फिल्मों की बात कम होती है, उसमें लोग क्या अतरंगी कपड़े पहन के आ रहे हैं उसकी ज्यादा बात होती है। अच्छा, सो कांस फिल्म फेस्टिवल में एक सेगमेंट होता है कांस क्लासिक्स, जहाँ पे क्लासिक फिल्में शोकेस की जाती हैं। और पहली इंडियन फिल्म जिसे वहां शोकेस किया गया था और उस फिल्म की टीम को इनवाइट किया गया था, वो फिल्म थी गाइड। सो 2008 में देवानंद साहब बकायदा कांस गए थे, वहां के रेड कार्पेट पे चले थे और ये गाइड फिल्म वहां पे शोकेस हुई थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

आजकल चिट्ठियां विट्ठियां कोई लिखता भी है कि नहीं लिखता है? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक टाइम था जब चिट्ठियां लिखना फिर उन चिट्ठियों के जवाब का इंतजार करना हमारा फेवरेट टाइम पास हुआ करता था, नहीं क्या छोटे होते? और सिर्फ रोमांटिक चिट्ठियां नहीं भाई, हम अपने रिश्तेदारों को भी चिट्ठियां लिखते थे, कजिन्स को भी चिट्ठियां लिखते थे, कोई हमारा दोस्त दूसरे शहर में रहता है उसको भी चिट्ठी लिखते थे, पेन फ्रेंड्स हम बनाते थे उनको भी चिट्ठी लिखते थे। और चिट्ठी लिखने भेजने के बाद उसके जवाब का जो इंतजार होता था, अच्छा फोन पे लैंडलाइन फोन पे भी बात हो जाती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो जो लिखे हुए लफ्ज पढ़ने में उसमें से जो इमोशंस निकलते थे उनको फील करने में जो मजा आता था ना, वो मजा अलग ही था भाई। इसीलिए मैं ऐसे सोच रही थी कोई चिट्ठियां आजकल लिखता भी है कि नहीं लिखता है। मुझे तो बस बैंक की चिट्ठियां आती हैं और कोई चिट्ठी आती नहीं है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप मुझे चिट्ठी ना से हेलो हाय लिख सकते हैं इंस्टाग्राम पे @rj.charu rj.charu मेरा यूजर नेम है। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: अरे चाटा क्यों मारा?
4: चला पैसे निकाल।
3: किस बात के पैसे?
4: अरे भाई जापान में एक रेस्टोरेंट में अगर कोई चाटा मारता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं।
5: क्या बोला तूने?
3: क्या बात कर रहा है भाई? अरे जरा उसका एड्रेस भेजना, मैं अपनी एक्स को भेजता हूँ।
6: क्या जोक मारा भाई?
3: और पता है क्या, इस पे अगर गाना बनेगा ना तो पता है कौन सा बनेगा?
4: कौन सा?
3: चाटा लगा।

0: अब बहनों और भाइयों, 1968 का ये सुपरहिट गीत जो गीत माला में पायदान नंबर 29 पर रहा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारु आपके साथ। ब्रह्मचारी फिल्म का दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, कंपोज्ड बाय शंकर जयकिशन, रिटन बाय हसरत जयपुरी एंड संग बाय मोहम्मद रफी। और क्या सिंगिंग है रफी साहब की इस गाने में भाई,
1: मतलब दो लाइन ऊंचे सुर में फिर दो लाइन एकदम नीचे सुर में। कल तेरे जलवे पराए भी होंगे लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी ऊंचे सुर में, और फिर फूलों की डोली में होगी तू रुखसत लेकिन महक मेरे सांसों में होगी नीचे सुर में।
0: ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिंगिंग रफी साहब, सदके वारी जाऊं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
3: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिंद सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood.
0: Only on Mirchi, it's hot.

0: रेखा हमेशा वक्त से आगे चली हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है 1983-84 में उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर एक ऑडियो कैसेट रिलीज की थी। इस बारे में उसी दौरान एक बहुत ही पॉपुलर इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: मैंने कुछ साल पहले एक्सरसाइज योगा करना शुरू किया। उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी, किसी किस्म का एक्सरसाइज नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा आई लाइक व्हाट आई डिड, काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा योगा करने से। उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं फिल्मों में काम करूं कि नहीं करूं। मेरे पास बहुत वक्त, मतलब फ्री टाइम आई हैड। एंड देन रमा बंस, शी इज़ वेरी गुड एट योगा, तो कहने लगे कि अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो व्हाई डोंट यू कम आउट, यू बीइंग अ फिल्म स्टार, एंड व्हाई डोंट यू कम आउट विद द टेप। तो वो टेप काफ़ी पॉपुलर भी होगा और एंड यू नो बिकॉज यू आर डूइंग इट, कोई नहीं तो आपके फैंस ज़रूर खरीदेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया, इट्स एन ऑडियो टेप, इट्स नॉट अ वीडियो टेप। तो मैंने किया, बाय गॉड्स ग्रेस इट्स अ वेरी बिग हिट।
0: वेल, इस ऑडियो कैसेट का नाम है रेखाज माइंड एंड बॉडी टेम्पल और इसकी एक कॉपी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, जिसमें इस ऑडियो के साथ रेखा की एक्सरसाइज और योगा फिटनेस के कुछ फोटोज भी हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi Stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची, it's hot.
6: 89.6, 89.6.
5: It's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.

1973 की फिल्म राजा रानी का एक बहुत ही पॉपुलर गाना रहा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये पॉपुलर गाना इज इंस्पायर्ड बाय और सैम्पल्ड फ्रॉम एक अंग्रेजी गाना जो 1969 में रिलीज हुआ था। बैंड का नाम द फिफ्थ डायमेंशन, गाने का नाम एज ऑफ एक्वेरियस। सुनिए जरा थोड़ा सा। समझ में आया आपको कौन सा गाना है ये? Written by आनंद बख्शी, sung by आशा भोसले एंड भूपेंद्र, composed by R.D. बर्मन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 89.6
2: It's hot.

0: Mirchi. Mirchi. Fresh Maal.
1: जब हर बीट में हो तड़का, तब बनती है चटनी।

इस गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने। म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी।

89.6 Mirchi 1. It's hot.